0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: फिर खुदा ने चाहा तो हमें ठीक बात मालूम हो जाएगी।

0: It's 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरूने मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: पूरा आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए।
2: दिस मैसेज वॉज ब्रॉट टू यू बाई FM 100 पाकिस्तान।
3: FM 100, लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।

0: It's 8 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan Khab, Vahan HBL.
1: Azra Behen, Zara Baat to Suno. Hatu Piche, Bhago.
2: Ahmed, Hatu Wahan Se.
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: 11.99%
5: ओ भाई, क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
4: 11.99%।
7: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिन सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट। जहां ख्वाब वहां HBL।
8: 100 FM।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
9: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 0311117837।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट। जहां ख्वाब वहां HBL।
10: पाकिस्तान इज बिल्डिंग अ सेफर स्मार्टर डिजिटल इकोसिस्टम एंड वी नीड योर टैलेंट। स्टेप अप, बिल्ड अ साइबर सेफ लाइफ एंड अनलॉक प्रीमियर करियर्स इन साइबर सिक्योरिटी एट द 5th डिजिटल पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन। Organized by Ignite under the Ministry of IT and Telecom, join hands-on training workshops in 16 cities and secure your future. Registrations are open now at cyberhackathon.pk.
11: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मर्तबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमत, तो फिर कहीं और क्यों जाएं? तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियत। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
12: आज सुबह किसी का व्हाट्सएप और किसी का बैंक अकाउंट हैक हो गया और कहीं एक बिजनेस साइबर अटैक का शिकार बन गया। साइबर अटैक सिर्फ सिस्टम्स को नहीं, जिंदगियों को भी टारगेट करते हैं। इसीलिए इग्नाइट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम brings you the 5th Digital Pakistan Cyber Security Hackathon. Hands-on workshops, red and blue teaming competitions. Agar aap student hai, cyber security professional ya ethical hacker, Pakistan ke agle cyber defender baniye. Register now at cyberhackathon.pk.
0: This program is brought to you by
6: Purani Gaadi Chhodo, Nayi Gaadi Ka Khwab Pura Karne Chalo, Karibi HBL Branch Chalo Ya Apply Karo Online
0: and
13: Sarsabz Nitro Force Ko Laga Aur Jeet Taja
0: and
13: Tabal Family Mixture Line Umrah Par Jaye
0: and HBL Freedom Account Jahan Khwab Wahan HBL
11: and Pakistan Ka Best Bank Mizan Bank, The Premier Islamic Bank
0: and
14: AGS Tubular Battery Hai To Dil Ko Hai Aaram
8: FM 100।
15: 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान,
8: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।

0: अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट आज समीहा. उम्मीद करती हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, नाश्ता कर लिया होगा, मूड बखैर होगा आपका. ये सारी चीजें हमने खुद ही करनी है, अपना मूड खुद ही अच्छा रखना है. लोग आपका मूड खराब तो कर सकते हैं, बहुत ही कम दुनिया में लोग हैं जो आपका मूड अच्छा करना चाहते हैं. तो अपने मूड के लिए जरूरी है कि सुबह का आगाज करें पॉजिटिव नोट पे. और हम आगाज करते हैं कुरान शरीफ के तर्जुमे के साथ. औजु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. सूरह अनकबूत का तर्जुमा हम पढ़ रहे हैं आयत नंबर 26 से. और हमने उसे इसहाक और याकूब हमने उसे इसहाक बेटा और याकूब पोता अता फरमाया. हमने उसकी औलाद में नबूवत और किताब रखी और हमने दुनिया में उसका सवाब उसे अता फरमाया और बेशक वो आखिरत में भी हमारे खास कुर्ब के लायक बंदों में होगा. आप सुन रहे थे सूरह अनकबूत का तर्जुमा और इस वक्त जिक्र हो रहा था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का. हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बड़े प्यारे नबी और उनसे बड़ी मोहब्बत. अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में भी बहुत भलाइयां अता फरमाई और आखिरत में भी, राइट. और अब हमारा टाइम हो गया है हमारी पक्की दोस्त का. कैसे हैं बच्चे पार्टी कैसी है, ठीक ठाक है. अक्टूबर का महीना शुरू हो गया, 1st अक्टूबर. होपफुली मौसम ठंडा हो जाएगा, लेकिन खैर अक्टूबर भी कोई इतना ठंडा होता नहीं है. और राइट, और हम लोग जो हैं बच्चों के लिए प्ले करते हैं पक्के दोस्त. आज टाइम कम है तो मैं बच्चों के लिए नाम तो नहीं ले पाऊंगी, लेकिन दोस्तों पक्के दोस्त का जो है ना, वो मैंने गाना जो है वो लगाना है बच्चों के लिए, है ना. तो अभी हम आपके लिए आई होप कि ये गाना चल जाए, राइट. तो ये गाना है इतवार पीर मंगल बुध. आइए सुनते हैं.
1: इतवार शलवार तलवार खीर पीर बंगल जंगल दंगल फंगल, ये क्या है. मतीन मतीन मतीन,
2: क्या है क्या है.
1: ये उर्दू में दिनों के नाम किसने रखे हैं, इतने मुश्किल नाम बच्चे के छोटे से दिमाग पे इतना बोझ डाल दिया. ये भी कोई शराफत है क्या. अल्लामा इकबाल ने रखे थे ये नाम.
2: नहीं नहीं नहीं नहीं,
1: फिर क्या क्या कायदे आजम ने रखे थे क्या.
2: अबे नहीं भाई,
1: तो किसने रखे थे ये नाम. कोई आसान रख देता जैसे संडे मंडे ठंडे, कोई मतलब कोई क्या क्या क्या.
2: ये नाम है ना बड़े आसान है, मैं तुमको याद करा सकता हूँ.
1: मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी भी याद होंगे ये नाम मतीन.
2: लाल बेग, याद हो जाएंगे, ट्राई करें.

0: याद हुआ ना? चलो तुम्हारी बारी आ गई।
1: अच्छा चलिए ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ।
0: करो करो।
2: It's 8:15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwaber Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. HBO Freedom Account के साथ मुफ्त fund transfer, मुफ्त checkbook, मुफ्त online banking और बेहतरीन mobile app की सहूलत के साथ HBO Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: 100 FM।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: जरा बहन जरा बात तो सुनो।
1: हटू भागो। अहमद हटू वहां से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: 11.9% 11.9%
4: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
5: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शरायतों से ज़वाबित लागू है।
3: 11.99%।
6: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
7: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
8: सर सर नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें या सर सर पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।
7: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
9: पाकिस्तान इज बिल्डिंग अ सेफर स्मार्टर डिजिटल इकोसिस्टम एंड वी नीड योर टैलेंट। Step up, build a cyber safe life and unlock premier careers in cyber security at the 5th Digital Pakistan Cyber Security Hackathon. Organized by Ignite under the Ministry of IT and Telecom, join hands-on training workshops in 16 cities and secure your future. Registrations are open now at cyberhackathon.pk.
7: Mufti fund transfer, Mufti check book, Mufti online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL freedom account.
10: Step School se foundation ho strong. Step Schools de raha hai modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details call now at 0311-111-7837.
11: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मर्तबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमत, तो फिर कहीं और क्यों जाएं? तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।

0: अपने कमाल पैकेज से AGS ट्यूबलेट दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
1: This program is brought to you by
2: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HPL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
3: एंड सरसब्स नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा।
4: एंड
5: कमाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उम्रा पर जाएं।
4: एंड HBL फ्रीडम का जहां ख्वाब वहां HBL।
6: एंड पाकिस्तान का बेस्ट बैंक Nizam Bank, the premier Islamic bank.
4: And
7: AGS tubular battery hai to, dil to hai aaram.
8: Like us on facebook.com/FM247365.
9: FM247365.
10: FM100 traffic update.
11: पाकिस्तान एफ एम 100 पर ट्रैफिक अपडेट के साथ मैं हूं फरोख बाजार। शहर कराची की सड़कों और इशाराओं पर ट्रैफिक की सूरत हाल कुछ इस तरह है। इस वक्त वो तमाम ट्रैफिक जो जा रहा है जौहर मोड़ से जौहर मोड़ और वहां से मिलेनियम मॉल से होता हुआ डिग रोड शारा फैसल की जानब, उस पर जौहर मोड़ और मिलेनियम मॉल के दरमियानी रास्ते पर ट्रैफिक का इस पर दबाव है और गाड़ियां कुछ स्लो मूव कर रही हैं। इसके साथ साथ वो ट्रैफिक जो बलोच कॉलोनी ब्रिज से कयूमाबाद चौरंगे की जानी जा रहा है अब से कुछ देर पहले, उसके दरमियानी रास्ते पर एक गाड़ी के खराब होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही थी, अब गाड़ी को हटा दिया गया है। वो तमाम लोग जो इस रास्ते को इस्तेमाल करना चाहते हैं बासानी अब इस्तेमाल करते हुए अपनी मंजिलों की जानब सफर कर सकते हैं। मजीद अपडेट रहने के लिए सुनते रहिए एफ एम 100 पाकिस्तान।
10: दिस ट्रैफिक अपडेट वॉज ब्रॉट टू यू बाय FM 100।

0: secure.
1: Join the 5th Digital Pakistan Cybersecurity Hackathon. Hands-on workshops and awareness sessions across 16 cities of Pakistan. Register now at cyberhackathon.pk.
2: An initiative of Ministry of IT and Telecom and Ignite.
3: This program is brought to you by
4: Purani gaadi chodo, nayi gaadi ka khwab pura karne chalo. Kareebi HP aur branch chalo ya apply karo online.
5: And Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
6: And Tabal Family Mixture laye, umrah par jaye.
7: And HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
8: And Pakistan ka best bank, Nizan Bank, the premier Islamic bank.
7: And
9: AGS tubular battery hai to dil ko hai.
10: पाकिस्तान हमसे है, हम अच्छे तो पाकिस्तान अच्छा, तो आओ अहद करें कि जैसा पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं वैसे खुद बनकर दिखाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान। अजमे इस्तेहकाम मुस्तहकम पाकिस्तान।
11: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
12: Like us on facebook.com/fm247365.
13: fm247365.
14: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
15: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाए।
14: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
16: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
15: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
14: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ही कम नहीं।
16: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी। सिर्फ बातें

वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आरजे समीहा. और आज हम बात करें वाइब्स की कि कैसी वाइब्स होती हैं. कुछ लोगों से आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, अच्छा लगता है उनके साथ, और कुछ लोगों आपको दाई कहते हैं यार क्यों आप आ गए हैं. कराची के अंदर हर जगह जाए था कि कराची नहीं, आई डोंट शुड नॉट ब्लेम, जो बड़े शहर होते हैं वहां जाके ना आपको लोगों अजीब ही आप, मैं आई डोंट फील लाइक गोइंग आउट एनी वेयर क्योंकि यहाँ पे बस हर कोई परेशान है. चलो परेशान समझ आता है, मुस्तकिल परेशान कौन होता है यार. मतलब सोचे एक बंदा रोजाना ऑफिस जा रहा है, उसका मुस्तकिल ही गंदा मूड है, वो मुस्तकिल नहीं मुस्कुराता. मतलब कौन लोग है, जैसे नादरा ऑफिस है कभी दिल नहीं, हालांकि बहुत बेहतर हो गया नादरा ऑफिस अल्हम्दुलिल्लाह, इंसानों वाला सलूक होता है. पासपोर्ट ऑफिस बहुत अच्छा हो गया आपका, डिफेंस वाले पासपोर्ट में तो हो फटाफट भाई, कुछ पता ही नहीं है, बस पैसे थोड़े ज्यादा लेते हैं लेकिन चलो माहौल अच्छा है और आराम से आपका काम हो जाता है और वाइब चलो ठीक ठाक है. क्योंकि वाकई में कभी लोगों की ना जान जाती है कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेस में जाने में, बोर्ड ऑफिस जाने में, सरकारी दफातर की वाइब्स ही अच्छी नहीं है. क्यों नहीं है भला, इतनी ये लोग तनख्वाह लेते हैं है? और आप उनके ऑफिसेस का हाल देखें. और खैर आई डोंट नो रिसेंट क्या हाल होगा, लेकिन दिल ही नहीं चाहता वहां जाने का. इवन अगर आप उसमें ड्रामों में भी दिखाते हैं ना, तो वो दिखाते पुरानी फाइलें रखी हुई हैं, अजीबोगरीब लोग बैठे हुए हैं, वो एक पियोन वहां का राजा होता है. किसी भी सरकारी इदारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बंदा होता है ना, वो चपरासी होता है. कहते हैं ना शाह से ज्यादा शाह के वफादार. तो अगर पियोन से आपकी दोस्ती होगी तो उसी ने आपको आगे लेके जाना है. और वहां ना सियासतें, सिफारिशें, जहां बहुत सारा रिश्वत ली जाए, वहां आपको वैसे ही अच्छी वाइब नहीं आएगी. लिटरली मैं बहुत पहले शायद लाइसेंस ऑफिस गई थी, वहां से मुझे अच्छी वाइब, मेरा मोबाइल ही चोरी हो गया था वायदे में. तो वो मतलब इस किस्म की वाइब्स यहां घूम रही होती हैं, अजीब अजीब एनर्जीज घूम रही होती है, आपको समझ नहीं आता. मुझे ऐसा लगता है कोई भी ऑफिस है जहां पे लोग बहुत ज्यादा आते जाते हैं या कस्टमर सेल्स है, वहां की वाइब बहुत अच्छी होनी चाहिए. आपका आपने बहुत ही पॉजिटिव इंसान को जो है ना अपने रिसेप्शन डेस्क पे बनाना है, जो हेल्पफुल है, मुस्कुराता है. मतलब भले आप किसी यंग इनएक्सपीरियंस इंसान को रख लें जो पॉजिटिव हो, बेहतर है कि आपने बहुत सीनियर इंसान को रखा हुआ जो सड़ा हुआ हो. लोग पहला इंप्रेशन जो है ना वो अच्छा पढ़ना चाहिए. सो या दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि आपकी वाइब सही हो. आई होप कि हमारे इलाकों की वाइब सही हो जाए. कल मैं जोरान ममदानी का इंटरव्यू देख रही थी और मैं सोची था हाय अल्लाह, न्यूयॉर्कर्स कितने लकी हैं, कितना कोई उनका प्यारा मेयर है और इतना अच्छा. वो ही केम टू अ टीवी शो एंड एवरीबडी स्टूड अप, मतलब उसको स्टैंडिंग ओवेशन मिल रही थी, लोग उसे इतना प्यार करते थे कि मेयर जो एक ज्यादातर पॉलिटिशियंस इतने पॉपुलर नहीं होते क्योंकि उनकी वाइब्स ही सही नहीं होती. जैसे ट्रम्प की वाइब बिल्कुल भी सही नहीं है. सोनाम ममदानी की वाइब इतनी अच्छी थी और कि वो सब खड़े हो गए उसके लिए और उसको भी इतना टाइम भी नहीं हुआ मेयर बने, क्योंकि उसने लोगों के दिल जीत लिए, लोग खड़े होके उसके लिए तालियां बजा रहे थे. होस्ट भी कहने लगा कि इतनी मोहब्बत, इतनी स्टैंडिंग ओवेशन किसी को भी नहीं मिली, पॉजिटिव वाइब्स. लगता था कि वो जिस तरह वो बात कर रहा था कि न्यूयॉर्क के बारे में इतना पैशनेट है और मतलब वो कहेगा यार, मतलब यू नो अफ्रीका यार कितने लकी हैं, एक हमारे यहाँ. मैं कुछ बोलना नहीं चाहते, कुछ बोलो तो वो जो मेरा बंदा ट्रैक कर रहा होता है वो सोच रहा होता है कि अब ये बोले गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ, तो मैं क्या बोलूं. लोग दिन रात बदवाएं दे रहे होते हैं. यूनिवर्सिटी रोड की वाइब्स देखी आपने, इतनी गंदी है वहां की वाइब्स. मतलब वहां जाते ही आपके दिल से गालियां कोसने शुरू हो जाता है. सर बहुत सारे इलाके वाइब्स हैं, मुझे वो कयूमाबाद वाला जो ब्रिज है, वो चुरंगी है, उसकी वाइब बहुत खराब लगती है. जहां पे बहुत ज्यादा गंदगी होती है, कचरा होता है, वहां की वाइब बहुत खराब होती है लिटरली. और मतलब मैं सोचती हूँ कि यार मतलब लोग कैसे रह रहे हैं उस कचरे के अंदर. आपको क्या लगता है कि वो सामने हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उठाएंगे वो? भाई आपके मोहल्ले का कचरा आपने खुद ही उठाना है, कुछ तो जिम्मेदारी ले लो. और अगर आप हुकूमत से सब चीजों की जिम्मेदारी ले रहे हैं, आप बहुत बड़े बेवकूफ हैं. इनको आप भले कितनी गालियां दे रहे हैं, कुछ कर लें, इनको नहीं पता चलेगा. खासतौर सफाई का तो आई डोंट थिंक यहां पे आइडिया, मर्दों को तो बिल्कुल ही नहीं है, कोई सिखाया ही नहीं जाता. तो आपने खुद ही ख्याल करना है ताकि आपके आसपास की फिजा जो है ना वो अच्छी अच्छी वाइब्स रहें. तो दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपने आसपास सफाई रखें. सफाई से ही अच्छी वाइब, सफाई इज द मेन थिंग. अगर इंसान साफ सुथरा है, उसकी सोच साफ सुथरी है और वो जगह साफ सुथरी है, तब आपका उस जगह पे दिल लगेगा. और अगर इंसान के अंदर कोई अजीब सी उसकी सोच बुरी है, वो खुद साफ सुथरा नहीं है, तो आपका वहां पे कभी भी दिल नहीं लगेगा. वहां सिर्फ गंदे लोगों का ही दिल लग सकता है, यू नो, गंदा गंदा मैचिंग मैचिंग. खैर ये हमारी बातें, आपकी बातें क्या हैं हमें बताएं, हमें मैसेज करें आरजे समीहा के फेसबुक पेज पे या एट आरजे समीहा इंस्टाग्राम पे आप बता सकते हैं हमें. और रिजवान रिजवी का भी मैसेज आया हुआ है. रिजवान रिजवी क्या कह रहे हैं,
اور رضوان رضوی کہیں جی ہاں ماحول جگہ لوگوں کی بول چال طرز زندگی کا بہت کے بہت اثرات ہوتے ہیں. جیسا گھر کا ماحول ہوگا بچوں اور بڑوں دونوں پر اس کے گہرے اثرات ہوں گے. بڑے بڑے بزرگوں کا ایک معقولہ ہے کہ اچھی صحبت جو ہے وہ اچھی ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا اچھے لوگوں کی محفل میں بیٹھے تو آپ کو پتہ چلتا ہے. اس طرح اگر ماں باپ گھر کے اندر ماحول ہے صبح جلدی اٹھنے کا, قرآن شریف پڑھنے کا, نماز پڑھنے کا, تو ان گھروں میں ویسی برکتیں رحمتیں اللہ کی رہتی ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے, یہ چیز ہے. فی الحال گانا لگانا بڑا ضروری ہے, اور میں اچھا پازیٹو گانا آپ کے لیے لگا رہی ہوں. آئیے سنتے ہیں.

0: AM. The Sound Check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan Khab, Wahan HBL.
1: Azra behen, zara baat to suno. Hatu bhi, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: 11.9% 11.9%
4: ओ भाई क्या है ये 11.99%?
5: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शरायतों से वाबित लागू है।
3: 11.99%।
7: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है, शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट। जहां ख्वाब वहां HBL।
8: 100 FM।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
8: 100 FM।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट। जहां ख्वाब वहां HBL।
9: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
10: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मरतबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमत, तो फिर कहीं और क्यों जाएं? तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक, मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
11: This program is brought to you by
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
12: एंड सर सब्स नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा।
13: एंड टबाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उम्रह पर जाएं।
0: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
10: एंड पाकिस्तान का बेस्ट बैंक, मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
0: एंड

0: It's 9:30 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Battery hai to jo hai ara.
2: Azra behen, zara baat to suno. Hatu bhi, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: 11.99%
5: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शरायतों से वाबित लागू है।
4: 11.99%।
7: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
8: 100 FM।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
9: अल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उमरा लिखें 02111182725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। अल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमरा पर जाएं।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
10: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन, विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
11: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मरतबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमत, तो फिर कहीं और क्यों जाएं? तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियत। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक, मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।

0: TVS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: This program is brought to you by
2: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HPL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
3: एंड सरसब्ज नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा।
4: एंड टबाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उम्राह पर जाएं।
5: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: एंड पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।

0: जरा बहन जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
1: अहमद हटो वहां से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: 11.9% 11.9%
4: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
5: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
6: 11.99% 100 FM मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट
7: 100 FM।
6: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL
7: 100 FM।
6: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
8: This program is brought to you by
5: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
8: एंड सरसब्ज नाइट्रो फॉस को लगा और जीत ताजा।
9: एंड टबाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं।
6: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां

0: वहां HBF
1: एंड पाकिस्तान का बेस्ट बैंक निजान बैंक द प्रीमियर इस्लामिक बैंक
0: एंड
2: AGS ट्यूबुलर बैटरी है तो दिल तो है आराम।
3: खवातीनो हजरात, मंशियात वो जहर आदिल है जिसकी संजीदगी का एहसास इंसान को तब होता है जबकि जहर हमारी रगों में जाहिर कर चुका होता है। बकती सुरूर और मजे का लिबादा ओढ़े ये लानत गैर महसूस तरीके से हमारी नौजवान नस्ल को अपने शिकंजे में ले रही है। मंशियात की लानत में गिरफ्तार होने की एक बड़ी वजह बुरी सोहबत है जिसको अमूमी तौर पर हम नजरअंदाज कर देते हैं जबकि दरअसल इस अमल का ताना बाना बुरी सोहबत और मेल जोल से जाके जुड़ता है। घर दिल से लौटना, वालदेन और घर वालों से नजरें चुराना, खानदान और अहबाब की महफिलों से गुरेज करना, गैर मामूली अखराजात में इजाफा, ये सब इसकी बड़ी अलामत है। खुदा रा अपने बच्चों पे नजरें रखे ताकि वो ताहयात आपकी नजरों के सामने रह सके। हमारा आज़्म एक कौम एक मंजिल और मंशियात से पाक पाकिस्तान।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: FM 24/7/365

0: your location for maximum music. It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
0: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247-365

0: It's 10:30 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Battery hai to dil ko hai aaram.
2: Azra behan, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: 11.9%
5: ओ भाई, क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
4: 11.99%।
7: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
8: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
9: अपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उमरा लिखे 02131182725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। अपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमरा पर जाएं।
8: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
10: FM 100, लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365
11: FM 247365।

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो। हटू पीछे भागो।
1: अहमद हटू वहां से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: 11.99%
4: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
5: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
6: 11.99% 100 FM HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
7: 100 FM
6: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
8: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
9: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
10: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी

0: Your location for maximum music. FM 100's time check. It's 11 a.m.
1: अजरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
2: अहमद, हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
0: On facebook.com/FM247365. Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
4: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: your location for maximum music.
1: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
3: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मुहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
4: मुफाद आमा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
5: FM 100 like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: the system, but it's love for money.
1: It's 11:30 a.m. This time check is brought to you by
2: AGS Tubular Battery hai to dil ko hai ara.
3: जरा बहन जरा बात तो सुनो हटो पीछे भागो अहमद हटो वहां से
4: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं घबराए नहीं समझदारी से काम लें सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें महकमा सेहत हुकूमत सिंध

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
1: अहमद हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन सार्फिन को आगाह किया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड फाल होने चाहिए। याद रखें, अगर आपके जेर इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया है या इसकी मियाद खत्म हो गई है या शनाख्ती कार्ड का हामिल फर्द वफात पा गया है तो आपकी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। लिहाजा किसी भी जहमत से बचने के लिए मोबाइल फोन सार्फिन को चाहिए कि जिन शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है उनकी फौरन तजदीद करवाएं। शनाख्ती कार्ड की मनसूखे से मुतालिक किसी भी मसले के हल के लिए नादरा से रजू करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सिम किसी वफाशुदा फर्द के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड ना हो। अगर आपकी सिम किसी वफाशुदा शख्स के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है तो कानूनी वारिस मुतलका कंपनी के सर्विस सेंटर मजाज फ्रेंचाइजीज पर जाकर जरूरी दस्तावेजात जमा करवा कर सिम की मुल्कियत अपने नाम करवा सकते हैं। शनाख्ती कार्ड की बरवक्त तजदीद मोबाइल फोन सार्फिन के तसलसल को यकीनी बनाने में मददगार साबित हो सकती है। पीटीए आपकी शनाख्त के तहफ्फुज और सार्फिन को महफूज टेलीकॉम सर्विसेज की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए।
4: FM 24/7 365
5: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
6: Only music, no RJ talk.
5: This is FM 100.
7: Come on.

0: FM 100's time check. It's 12 noon.
1: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
2: अहमद, हटो वहां से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।

0: FM 24/7 365. FM 100. 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
1: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.

Ed.

ओके जी, तो हो चुका है प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज। और अब जो कि बाकायदगी से आगाज हो चुका है, तो आपको तरीकाकार बताते हैं कि कैसे आप बन सकते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा। इसके लिए आपने अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, KHI लिखना है, स्पेस देना है, अपना मैसेज टाइप कर सेंड कर देना है 3636 पे। साथ ही साथ आप जो है वो RJ फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप वहां पर भी कॉमेंट कर सकते हैं क्योंकि स्टेटस हो चुका है वहां पर भी अपडेट। तो कैसी गुजरी आपकी जिंदगानी, क्या है हालचाल। नए महीने में हम दाखिल हो चुके हैं जो कि है मंथ ऑफ अक्टूबर, 10वां महीना है ये साल का, यानी कि साल 2026 का। तो आप सबको नए महीने में दाखिल होने के लिए हम देते हैं मुबारकबाद। जी हां, क्योंकि ये 1 अक्टूबर है और अल्लाह करे कि ये महीना हम सबके लिए बहुत अच्छा साबित हो, अच्छा गुजरे, अच्छी खबरें सुनने को मिले, हमें अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिले और नागानी आफत मुश्किल परेशानियों से हम दूर रहें और ये नए महीने की शुरूआत और अख्ताम दोनों ही बहुत अच्छा हो। Because we are a new month now and this is the month of October, और आज 1 अक्टूबर है। और अगर मेरे लिसनर्स में से किसी की है सालगिरह यानी कि बर्थडे, तो आपको बहुत मुबारक हो जी, आपकी बर्थडे शर्टडे है अगर आज के दिन तो है, तो भाई हमें जरूर बताइएगा, हम आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। और उसी के साथ साथ क्योंकि प्रोग्राम का बाकायदगी से आगाज हो गया, तरीकाकार आपको बता दिया, तो इंतजार करें आपके मैसेज का, जल्दी जल्दी हमें मैसेज करें और बताएं किस वक्त आप हमें कहां से सुन रहे हैं। शामिल करते हैं ट्रैक और आते हैं वापस ट्रैक के बाद।

0: I'm gone.
1: तो ट्रैक को कर लिया हमने शामिल और बातों का सिलसिला भी आप लोगों के साथ जारी है. नए महीने में दाखिल हो गए तो मैंने कहा चलो जी सबको जरा मुबारकबाद देते हैं इस नए महीने की कि हम एक नए महीने में दाखिल हो चुके हैं. और न्यू मंथ मींस न्यू गोल्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू थिंकिंग, न्यू माइंड एंड लॉट्स ऑफ न्यू थिंग्स एंड न्यू गोल्स एंड अचीवमेंट्स टू. कुछ लोग अपनी अचीवमेंट्स के बहुत करीब होते हैं, कुछ लोग अचीव करने जा रहे होते हैं, कुछ लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं अपने नए गोल्स को लेकर. तो बिल्कुल जी नया महीना शुरू हो चुका है, जो भी आपकी प्लानिंग है उस पर जरूर अमल करें और अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाब भी करे. तो जी बातों का सिलसिला आप लोगों के साथ जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल शामिल करना होगा मुझे एक अदद ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आएंगे वापस और करेंगे आपसे खूब सारी बातें. तो कहीं मजा आएगा. वी विल बी राइट बैक.
2: जरा बहन जरा बात तो सुनो. हटो पीछे भागो.
3: अहमद हटो वहाँ से.
4: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले. सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं. इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं. करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें. महकमा सेहत, हुकूमत सिंध.
5: facebook.com/fm247365 fm247365

0: ओके जी, सो आप लोग बिली जीन्स को एंजॉय कर रहे थे। इसी के साथ साथ जो है आप लोग हमें 3636 से मैसेज कर सकते हैं या फिर आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे पास मैसेज आया है अक्सा का। अक्सा हमारी न्यू लिस्नर है, कहती हैं आप ही आपका शो एंजॉय कर रही हूं, गुड शो, गुड म्यूजिक एंड गुड टाइम, दैट्स ग्रेट। और हमें मैसेज करते हैं, कहते हैं FM 100 की खूबसूरत शो की खूबसूरत आरजे फातिमा खान, अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपके इतने खूबसूरत कॉम्प्लीमेंट का। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूं। कहते हैं जी हाउ आर यू, तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक मजे में हूं, आप बताएं। तो कहते हैं आई एम गुड, आप के शो में शामिल होकर मुझ समेत ऑल लिसनर्स का दिल बाग बाग हो जाता है। अरे वाह भाई, ये तो बहुत ही अच्छी बात है और यही हमारी ख्वाहिश है कि सबका दिल जो है वो बाग बाग रहे। कहते हैं कि जी बिल्कुल ऐसा ही शो होता है आपका। इनके लंच में आज साबुत मसूर है। कहते हैं आपके लंच में पॉसिबल हो तो ट्रैक लगा दीजिएगा, रशीद खान फ्रॉम कराची किंग सिटी। मेरे लंच में भी क्या है इसका फैसला ही हो रहा है कि जी हम बिरयानी खाएंगे, दाल चावल खाएंगे, क्योंकि आज हम ऑफिस में लंच मंगवा रहे हैं। सो देयर वाज अ यू नो कंफ्यूजन बिहाइंड दिस कि दाल चावल मंगवाएं या फिर क्या मंगवाएं। तो अभी ये फैसला हुआ नहीं है, लेकिन जल्दी होगा और मैं जल्दी आप लोगों को बताऊंगी कि हमने क्या लंच फाइनलाइज किया है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अदर रिस्पॉन्स, देन आई विल शेयर इट विद यू। और रशीद खान ने हमसे ट्रैक की रिक्वेस्ट की है और ये ट्रैक इनका तो भाई मोस्टली फेवरेट चल रहा है। चलो जी, इसे भी हम शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रेक एंड देन वी विल बी राइट बैक विद दिस ट्रैक। आज इंटरनेशनल कॉफी डे मनाया जा रहा है। ओके, अभी कल परसों मैंने आपको बताया था तो नेशनल डे था, लेकिन आज इंटरनेशनल यानी कि कॉफी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और कॉफी आजकल जेंजीज की द मोस्ट फेवरेट तरीन चीज है, कॉफी जिसे वो बड़े शौक से पीते हैं, बड़े शौक से खरीदते हैं। महंगी महंगी कॉफियां भाई आजकल तो पता नहीं कौन कौन से फ्लेवर्स एंड थिंग्स आर अवेलेबल। तो भाई आज इंटरनेशनल कॉफी दिन है, यानी कि कॉफी के शौकीन लोगों के लिए आज का दिन है। सो भाई आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, अगर आप कॉफी रोजाना की बुनियाद पर पीते हैं तो एंजॉय, योर डे है आज, आपका दिन है, तो आज एंजॉय करके कॉफी पिए, क्योंकि आज प्राउड वाला दिन है, क्योंकि आज इंटरनेशनल कॉफी डे है। और इसी के साथ साथ फिलहाल तो हम ब्रेक की जानब जा रहे हैं, फिर वापस आएंगे ट्रॉय के साथ और करेंगे आपसे मजीद बातें। तो कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक।
1: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
2: अहमद, हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बहुत सी औरतों को माली, जिस्मानी, जहनी और जिनसी घरेलू तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है। चाहे आप किसी के शौहर, वालिद, भाई या बेटे हों, अपना स्ट्रेस और फिक्र को अपनी बीवी, बेटी, बहन या वालदा पर हरगिज ना निकालें। हुकूमत पाकिस्तान ने घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली औरतों के लिए खुसूसी हेल्पलाइन 1099 के साथ हेल्पलाइन 1099 ऐप का आगाज किया है, ताकि हमारे इदारे उनकी भरपूर मदद कर सकें। अगर आप या आपके जानने वाले घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं, तो फौरी तौर पर हेल्पलाइन 1099 ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें। होम स्क्रीन पर अपना नाम, फोन नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करके साइन अप करें। हंगामी हालात की सूरत में जहां आपकी या किसी की जान खतरे में हो, लाल बटन का इस्तेमाल करें, जिससे मुतल्लिका इदारे आपकी मदद के लिए फौरी हरकत में आ जाएंगे। तफसीली शिकायत के लिए सब्स बटन का इस्तेमाल करें, जिसमें आप तहरीरी शिकायत के साथ वीडियो, तस्वीर और ऑडियो सबूत भी जमा कर सकते हैं। याद रखिए, घरेलू तशद्दुद कानूनन जुर्म है और हम सबको मिलकर इसे रोकना है। तशद्दुद से तहफ्फुज़ आपका हक है। वज़ारते इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
5: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
6: 100 FM।
7: हाय फ्रेंड्स, आई एम मिकाल ज़ुल्फ़िकार एंड टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर बट एज समवन हू केयर्स अबाउट योर फ्यूचर। We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: پاکستان میں بڑھ سے پھیکنگ کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے. روزانہ عام شہری، بزرگ، خواتین، طلبہ اور کاروبار سے وابستہ افراد اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ سے محروم ہو رہے ہیں. اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو اہم باتوں پر رہنمائی فراہم کریں گے. اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو اسے واپس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور مستقبل میں واٹس ایپ کو دوبارہ ہیک ہونے سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں واٹس ایپ ہیک کیسے ہوتا ہے. پاکستان میں عام طور پر واٹس ایپ ہیکنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقے، آپ کو واٹس ایپ یا کسی کرنے والے کے نام سے پیغام آتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے یا یہ 6 ہندسوں کا کوڈ بھیج دیں. بعض اوقات یہ پیغام کسی دوست یا رشتے دار کے نمبر سے آتا ہے جس کا اکاؤنٹ پہلے ہی سے ہیک ہو چکا ہوتا ہے. لوگ لا علمی یا جلدی میں 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ شیئر کر دیتے ہیں. بس اسی ایک غلطی سے ہیکر آپ کے واٹس ایپ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے. یاد رکھیں، واٹس ایپ کا تصدیقی کوڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا. نہ واٹس ایپ خود مانگتا ہے، نہ کوئی ادارہ اور نہ کوئی دوست. اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے تو فوراً کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو گھبرائے نہیں، اپنے موبائل فون سے واٹس ایپ ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ انسٹال کریں. ساتھ ہی اپنے دوستوں اور خاندان کو کسی اور نمبر سے اطلاع دیں کہ اگر آپ کے نام سے کوئی مشکوک پیغام آئے تو اس پر ہرگز یقین نہ کریں. اپنا وہی موبائل نمبر درج کریں جو واٹس ایپ پر رجسٹرڈ تھا. واٹس ایپ آپ کو ایس ایم ایس یا کال کے ذریعے 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ بھیجے گا. یہ کوڈ درج کریں. زیادہ تر کیسز میں اسی مرحلے پر ہیکر کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ واٹس ایپ ایک وقت میں صرف ایک ڈیوائس کو اجازت دیتا ہے. اگر تصدیقی کوڈ نہ آ رہا ہو یا پن لگا دیا گیا ہو، اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر 2-step ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے، واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کریں. 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن صرف اسی نمبر پر. اس دوران یہ باتیں لازمی

0: your location for maximum music.
1: It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा।
1: This program is brought to you by
3: Step School से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। कॉल नाउ एट 03111-7837.
4: facebook.com/fm247365 fm247365.
5: You're in tune with the lunchtime special on the big one, FM 100.

This is the Lunchtime Special, only on FM 100.

Assalamu alaikum, Pakistan, and assalamu alaikum everyone. This is me, Fatima Khan, and aap sun rahe hain FM 100 Pakistan. आप सबको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल में, जिसमें हमारे साथ हम आपके साथ मौजूद होते हैं. मैं सोची थी हमारे साथ कोई मौजूद है, मुझे याद है नहीं, हमारे साथ कोई मौजूद नहीं है. मैं आपके साथ मौजूद हूँ 12 से 2 के दरमियान, और बिल्कुल ये साथ हमारा कायम होता है. मैं प्रोग्राम के सेकेंड हाफ में हम दाखिल हो चुके हैं. आपसे गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी है. प्रोग्राम के सेकेंड हाफ की रवायत ये होती है कि जी एक आधा ट्रैक जो है वो तमाम सुनने वालों के नाम किया जाता है, और फिर जो है वो बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाता है. तो चलें जी, सबसे पहले ऐसा करते हैं कि हम अपनी रवायत को करते हैं कायम, फिर आपकी बातों फिर आपसे बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं. रिक्वेस्टें भी आ रही हैं, बातें भी चल रही हैं, लंच में क्या है ये भी जानना है. तो चलें जी, सबसे पहले करते हैं रवायत को कायम, और फिर करते हैं बातों का बाकायदगी से आगाज इस ट्रैक के बाद.

0: जी दोस्तों, तो भाई मैसेजेस भी आ गए हैं। जरी नूर कहती हैं कि आज खाने में चिकन स्टू है और आलू की तहरी है, सैलड है, जबरदस्त हो गया भाई, यमी यमी। और लुपल कहती है मेरे लंच में मिक्स दाल है, वाओ दैट्स आल्सो लवली। तो मजे मजे के लंचेस क्या क्या किसके पास मौजूद हैं ये हमें पता चल रहा है। इसके साथ साथ ब्रेक की जाने भी हम जा रहे हैं, और भाई फरहान सईद की आवाज भी शामिल करनी है, क्योंकि हमसे मारिया ने कहा है, मारिया खान कह रही हैं कि जी आप जो है वो फरहान सईद की आवाज में कोई भी ओएसटी सुना दें। चलो फरहान सईद की आवाज ही अगर आप सुनना चाहती हैं तो बिल्कुल हम इसे शामिल करेंगे, डील डन रही। पर एक छोटे से ब्रेक की जाने भी जाना है जरूरी, तो छोटे से ब्रेक की जाने चलते हैं, वापस आते हैं फरहान सईद की आवाज के साथ, तो कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक।
1: जरा बहन जरा बात तो सुनो, हटो भागो।
2: अहमद हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: This program is brought to you by
5: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at
4: 03111-7837. FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
6: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

ओके माई फ्रेंड्स, सो आई एम बैक अगेन. ऑब्वियसली हम आ चुके हैं वापस, क्योंकि अभी हमारा और आपका साथ 12 से 2 के दरमियान है, तो ये साथ हमारा कायम और दायम है. बहुत सारी बातें भी बाकी हैं जो हम आपसे करेंगे. आज इंटरनेशनल कॉफी डे मनाया जा रहा है, तो बहुत सारी जगहों पर जो है वो कॉफी पे डिस्काउंट और सेल भी लगी हुई है. तो इंटरनेशनल कॉफी डे पर आप ये फायदा भी उठा सकते हैं, बिकॉज आई हैव सीन राइट नाउ कि बहुत सारी जगह पर सेल वेल भी लगी हुई है. ओनली फॉर वन डे, बिकॉज आज ही का दिन मनाया जा रहा है ये दिन. जरीन नूर कहती हैं, थैंक्स सॉन्ग के लिए, खुश रहो, बहुत शुक्रिया आपका. हमारे पास मैसेज आया है, कहती हैं, आपने मेरा मैसेज नहीं पढ़ा और मिक्स दाल के साथ चावल हैं. आपने हाफ मैसेज पढ़ा है और बाकी के मैसेज नहीं पढ़े. अल्लाह लुकवर्ल, इतना माइंड कर लिया, सिर्फ चावलों का जिक्र ना किया तो आपने दिल पे ही ले लिया. कोई बात नहीं भाई, हम वापस बताते हैं कि लुकवर्ल्ड के लंच में जो है वो मिक्स दाल और चावल है. तो जरीनूर कह रही हूँ, लुकवर्ल्ड, अब आपके मैसेज को हमने पूरा शामिल कर लिया है. उम्मीद करते हैं कि अब आप खुश होंगी. और आपकी ये मैसेज आया था, आपकी तबियत का भी हमने शामिल कर लिया था. एंड ऑल दो, इसके अलावा तो आपका कोई मैसेज मुझे रिसीव नहीं हुआ है. इज दिस, आपने क्या मैसेंजर पर सेंड किया है, तो वो भी देख लेते हैं, लेकिन आया नहीं हमारे पास कोई. और इसी के साथ साथ जो है वो, अभी कॉफी पे हम बात कर रहे थे कि भाई कॉफी पे हर जगह जो है वो सेल लगी हुई है. उसी के साथ साथ मैंने कहा जरा और भी दिनों पर नजर डालते हैं जो हमने डाली नहीं है अभी तक. आज इंटरनेशनल म्यूजिक डे भी है. जी हाँ, म्यूजिक जो है वो आपको समटाइम्स एंजाइटी से, स्ट्रेस से निकालने में एक अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि कभी कभी जब आपका मूड अच्छा नहीं होता और आप अपनी पसंद का म्यूजिक सुनते हैं तो आप बहुत बेहतर महसूस करते हैं. डोंट इग्नोर दीज अनबिलीवेबल बट द ट्रू फैक्ट्स. तो इस पर भी ये हकीकत है कि ये चीज पढ़ी गई है और देखा गया है कि जो म्यूजिक है वो आपकी पेन को रिड्यूस करने में मदद करता है और साथ ही साथ जो है वो एंजाइटी को भी कम करता है. तो यानी कि इतना जो है ये फायदेमंद इन दिस सेंस है कि मतलब आप रिलैक्स फील कर सकते हैं म्यूजिक को सुनकर. अच्छा जी, उसी के साथ साथ और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि जी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें. तो लाफ्टर बूस्ट योर इम्यून सिस्टम. क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर जो है वो आपके इम्यून सिस्टम को बहुत बेहतर करती है, इसलिए ये बहुत फायदेमंद है. उसी के साथ साथ आप जानते हैं कि अगर आप ठंडे पानी से शावर लेते हैं तो इससे जो है आपकी ब्लड सर्कुलेशन, ऑल दो सर्कुलेशन जो है वो बहुत इंप्रूव होती है. और आप जानते हैं कि अगर आप एक सेब खाते हैं तो ये आपको बहुत एनर्जी प्रोवाइड करता है, एज कम्पेयर टू दिस कि आप सुबह सुबह जो है वो कॉफी पी लें और आप भी कॉफी से सोच के पी रहे होते हैं कि यार मुझे तो ताकत चाहिए, आई वॉन्ट एनर्जी. लेकिन कॉफी से बहुत अच्छी एनर्जी आपको एक सेब में मौजूद है. वो कहते हैं ना, ईट एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, तो वो ऐसे ही नहीं कहते, बिकॉज देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. क्योंकि एप्पल में बहुत एनर्जी होती है और वो आपको कॉफी से ज्यादा सुबह तरोताजा रखने में आपकी मदद करता है. इसी के साथ साथ ग्रीन स्पेस, यानी कि वो जगह जो हरी भरे जगहों पर हम जा रहे होते हैं, बड़ी ग्रीनरी होती है, तो वो आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत बूस्ट करता है. यानी कि ये आपको बड़ा रिलैक्स और एंजॉय करने में मदद करता है. सो दैट इज व्हाई ग्रीनरी इज सो नाइस. इसे देखकर आप बहुत बेहतर महसूस कर सकते हैं. और ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिस पर हम बात कर रहे हैं और आपको मजीद भी बताएंगे. और इसी के साथ साथ ट्रैक की जाने भी चलते हैं, क्योंकि वक्त भी जो है वो तेजी से गुजर रहा है. तो एंजॉय करें, एस ओ एस टी की रिक्वेस्ट भी है और ये पसंद भी आ रहा है लोगों को. तो सो एंजॉय, वी विल बी राइट बैक.

0: ओके सो आप लोग दरिया निजात को बस्ती को एंजॉय कर रहे थे, इस ड्रामे को भी बड़ा पसंद किया जा रहा है और आफ्टर आपकी इज्जत ये ड्रामा आप पसंद कर रहे हैं लोग और इसकी राइटर और आपकी इज्जत की राइटर सेम उमेरा ने लिखा है ये ड्रामा और बहुत ही अच्छा लिखा है और आपकी इज्जत तो भाई सबके दिलों पर आज तक राज कर रहा है, हालांकि उसको भी खत्म हुए एक वीक भी नहीं हुआ है बट स्टिल एवरीबडी लव्स इट। और जब भी आप किसी से बात करना शुरू करें ना तो वो आपको पहली किस्त से दास्तान सुनाना शुरू कर देता है। सो द गुड थिंग इज दैट कि अच्छे ड्रामे देखकर ना आपका मूड जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है, आप अच्छा फील करते हैं। अच्छे ड्रामे मैसेज ओरिएंटेड ड्रामे जब भी बन रहे होते हैं आ रहे होते हैं तो उसे देखिए बड़ा मजा आता है और आपके पसंदीदा एक्टर्स को जब आप देखते हैं बहुत अच्छे से कोई डिफरेंट रोल करते हुए तो बड़ा मजा आता है और आप इंजॉय कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह इस ड्रामे को बड़ा पसंद किया जा रहा था, दरिया निजात भी बहुत शौक से लोग देख रहे हैं बिकॉज आपकी इज्जत और इनकी राइटर इज सेम सो एवरीबडी एक्सपेक्टिंग सो मच एंड गुड ड्रामाज मैसेज ओरिएंटेड सोसाइटी के करंट इशूज को देखते हुए हर चीज को मद्देनजर रखते हुए चीजों को आजकल दिखाया जा रहा है समझाया जा रहा है क्योंकि सोशल मीडिया तो हमारे हाथों में है, हम सबके हाथों में मौजूद है लेकिन ऑल दो टीवी से एक अलग ही किस्म का लगाव है, वो खबरें सुनने का एक अलग ही मजा है, ड्रामे देखने का एक अलग ही मजा है। तो बिल्कुल तो ये एक नेक्स्ट चीज है जो हम एंजॉय करते हैं। जरीन नूर कहती है मेरा भी जब दिल उदास होता है तो मैं अपनी पसंद का म्यूजिक सुन लेती हूं, तो इससे आपका दिल अच्छा हो जाता है ना जरीन नूर, ये तो एक फैक्ट है, वाकई में ये एक फैक्ट है कि जब आप अपनी पसंद का म्यूजिक सुनते हैं तो आप जितनी भी स्ट्रेस एंजाइटी में हो टेंशन में हो ना तो आप बड़ा अच्छा महसूस करते हैं। तो बिल्कुल अपना भी ख्याल रखें और अपनी पसंद का म्यूजिक सुने ताकि आपका दिल जब हो उदास तो वो हो जाए एकदम से खुश, क्योंकि उदास रहने का हक नहीं है आपके पास। चलते हैं जी ब्रेक की जाने और फिर आती हूँ मैं ट्रैक के साथ वापस।
1: This program is brought to you by Step School से Foundation Ho Strong. Call now at 03111117837.
2: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
3: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
4: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
3: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं, सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
4: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी। अपना BMI चेक करवाएं,
2: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें, वेट से आगे का सोचें।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

रियल फील्स लाइक बिफोर एक्चुअली मैं डेंटिस्ट था, लेकिन इस वक्त 34 है एंड रियल फील्स लाइक इज ऑल्सो 34. और एक दो दिन बाद की मौसम की अच्छी प्रोडक्शन भी है कि अबर आलूद मौसम हो जाएगा, दो दिन ही रहेगा और चंद एक इलाके में बारिश भी होगी, वो भी अक्टूबर जैसे गर्म महीने में, क्योंकि अक्टूबर का महीने में भी गर्मी होती है, हब्स होता है. लेकिन भाई इस दफा ये खबर सुनने में आ रही है और अच्छी खबर है ये, तो देखते हैं क्या होता है. तो जी आपने ये करना है कि अपना भरपूर ख्याल रखना है, हंसते मुस्कुराते रहना है, किसी से शिकवा है गिला है तो उसे भी करना है दूर और दोस्ती का हाथ बढ़ाना है आगे, क्योंकि जी नाराजगी में कोई फायदा नहीं है बल्कि नुकसान ही होता है, तो इसलिए हंसते मुस्कुराते भी रहें और नाराजगी से करें टाटा बाय बाय. और इसी के साथ साथ हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे कल. अल्लाह हाफिज़ एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू ऑल टुमारो.

0: 24/7, 365. FM 24/7, 365. KHI space your text message. Send it to 3636.
1: In radio.

0: जरा बहन जरा बात तो सुनो।
1: हटो पीछे भागो।
2: अहमद हटो वहां से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: This program is brought to you by
5: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 03111117837.
4: facebook.com/fm247365 fm247365 KHI space your text message. Send it to 3636.
6: Genie in radio.

Alrighty, everyone, welcome back. Aap sun rahe hain from 100 Pakistan, and it's 31 minutes past 2 on the dial right now. आप लोग हमें मैसेज कर रहे हैं 3636 पर एंड ओके आज जो हम बात करने वाले हैं द टॉपिक इज क्वाइट फनी और मजे का टॉपिक है वो हमारा आज जो हम बात करने वाले हैं इट्स अबाउट कि जब आप ब्रोक होते हो यानी पैसे नहीं होते बहुत कम रह जाते हैं जैसे मंथ के एंड में ऐसा होता है तो What is your favorite go-to food? Yani, jo acha bhi ho, sasta bhi ho, aur maze ka bhi ho. And that food is your best buddy. Hota hai na kisi ka, jaise kehte hain ki bhai ye kaisa khana hai jo kam paison mein bhi hai, lekin ek to jeb pe halka hai aur टेस्ट में जो है वो बड़ा जबरदस्त है सही है अच्छा भी है सस्ता भी है और बहुत मजे का भी है एंड यू ऑलवेज गो ओवर देयर व्हेन यू हैव यू नो शॉर्ट अमाउंट और ज्यादा पैसे नहीं होते एंड यू ऑलवेज थिंक कि ये हमारे जो है गरीबाना टाइम का जो है खाना साथी है सो व्हाट इज दैट वन फूड दैट यू ऑलवेज हैव जब एक छोटा सा गुर्बत का दौर आता है तो आपने हमें बताना है 3636 पर मैसेज करके या आप पेज पर भी हमें बता सकते हैं इनबॉक्स में मैसेज करके विच इज facebook.com/archer.jasmine JAZMINE वहां पे आप बता सकते हैं बिल्कुल और चाहे तो 3636 पर भी हमें मैसेजेस कर सकते हैं हमारे पास काफी सारे मैसेजेस जो हैं वो आ चुके हैं एंड मजे की बात पेज पे आए हैं ओके हमारे पास नद्दा का मैसेज आया वालेकुम अस्सलाम नश्तर का ओएसटी ने कहा कि प्ले कर दीजिएगा ठीक हो गया है जरूर कर देंगे थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज ओके सालेउद्दीन हमें मैसेज किया है वालेकुम अस्सलाम एंड रिक्वेस्टेड फॉर द सॉन्ग कॉल्ड कैसा ये इश्क है इसका ओएसटी प्ले कर दें ओके थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज विल डेफिनेटली प्ले योर सॉन्ग थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज और इसी के साथ साथ बिल्कुल आप हमें मैसेज करके भी बता सकते हैं और पेज पे भी बता सकते हैं कि व्हाट इज योर फेवरेट फूड एंड व्हिच यू यूजुअली हैव जब आपके पास पैसे बहुत कम होते हैं या ऑलमोस्ट एंड पे होता है बता सकते हैं सो राइट नाउ वी आर मूविंग ऑन टूवर्ड्स योर रिक्वेस्ट ऑफ नदा एंड द ट्रैक इज The OST of Nashtar Milton's Gaane Ke Baad.

0: Alrighty, everyone, welcome back. So, आप सुन रहे हैं From 100 Pakistan. And हमारे पास मैसेज आया है पेज पे. अरे मेरी पुरानी लिस्टनर का मैसेज आया है. मरियम अंजुमीन, कैसी हैं आप? ठीक हैं? थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज, लॉन्ग टाइम. ठीक है, उन्होंने अपनी हाजिरी लगा दी है. एंड ओके, सो हम बात कर रहे हैं कि आप लोग का जो है वो फेवरेट गुरबत का खाना क्या है. आप हमें बता सकते हैं मैसेज करके 3636 पर. एंड यू कैन ऑल्सो सेंड इन योर मैसेजेस ऑन आर पेज विच इज facebook.com/rj.jasmine. ठीक है, वहां पे जाएं, इनबॉक्स करें और हमें बताएं. अच्छा, उन्होंने लिखा है, सो माई ब्रोक फूड इज नूडल्स, मैगी है. एंड और उसमें 2 मिनट्स में अमीरी का एहसास हो जाता है. हाँ, सही बात है. ये बेस्ट है यार. दिस नूडल्स थिंग इज समथिंग जो फौरन से एक तो बन भी जाता है, एंड अगर आप उसको थोड़ा सा यू नो एनहेंस करके बना ले तो आप उसको बहुत तरीके से बना सकते हैं. यू नो काइंड ऑफ पास्ता आपने उसकी तरह बना लिया, और स्पाइसी स्पैगेटी करके बना लिया, या उसको अपना देसी हॉटपॉट की तरह बना लिया. यू नो एंड यस, दाल चावल विद अचार एंड सैलड. सीईओ ऑफ ब्रोक डेज मेन्यू. सीरियसली यार, दाल चावल, ओ गॉड, वाकई में यार दाल चावल इज समथिंग के मासूम होते हैं. दाल चावल बहुत सीरियसली वाकई में बड़े मासूम होते हैं. यू कैन हैव इट विद अचार, और वाकई मासूमाना खाना है, बिल्कुल कह सकते हैं. यार मेरा भी ना, अगर मैं बात करूं अपना ब्रोक फूड के हवाले से, जब बिल्कुल यू नो पैसे नहीं होते और सोच रहे होते हैं कि अरे यार अभी जो है क्या ऐसा खाएं जो मजे का भी हो और सस्ता भी हो और टिकाऊ हो, फर्स्ट थिंग दाल चावल इज ऑलवेज दैट कम्स इन माई माइंड. दाल चावल इज अ बेस्ट ऑप्शन, नॉट बैड, इट्स अ बेस्ट ऑप्शन. सो आप लोग हमें मैसेज करके बिल्कुल बता रहे हैं कि आप लोगों का जो है वो गरीबाना खाना क्या होता है जब यू नो पैसे बहुत कम होते हैं एंड यू आर टोटली ब्रोक. एंड वो कौन सा स्पॉट है जहां आप खाना खाते हैं जाकर, और कौन सी ऐसी वो चीज है जो आप खाते हैं, आपने हमें मैसेज करके बताना है 3636 पर. एंड पेज पे भी आप बता सकते हैं. राइट नाउ जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, फिर वापस आएंगे, एक और सॉन्ग प्ले करेंगे, हमारे साथ रहेगा.
1: This program is brought to you by
2: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at
1: 03111-7837. FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
3: FM247365.
4: I'm a genie. Genie in radio.

होते हैं, तो मैं अंडे आलू का सालन बनाती। यार ये कैसी चीज है कसम से। आई मस्ट से कि जब एक मंथ का एंड जब स्टार्ट होता है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि थोड़े से हाथ जो है वो हाथ टाइट हो जाता है। एंड होता ये है कि उसमें आपको जो है दाल सब्जी ये चीजें खाने को मिल रही होती हैं। और घर वाले बोल रहे होते हैं कि हाँ हाँ बहुत खा लिया, अब जरा बेटा थोड़ा दाल सब्जी भी हजम करने की आदत डालो। दाल सब्जी इट्स अ वेरी गुड थिंग। और अब तो खैर दाल भी जो है वो गरीबों का खाना ऐसा रहा नहीं है। खैर एनीवेज, मारिया ने हमें मैसेज किया है कराची से, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं। मारिया कह रही हैं आप हारा दिल इस ड्रामे का ओएसटी लगा दें और आपकी आवाज मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज मारिया। अगर ये ना मिले मुझे तो एक ऑप्शन में मुझे बता दो, और अगर यहाँ मैसेज नहीं करना तो आप पेज पे कर दो मेरे, विच इज facebook.com/rj.jasmine, ठीक है, वहां पे जाके आप कर दो और मुझे बता दो ट्रैक। अगर ये ना हो तो ऑप्शन में मुझे बता दिया करो। ओके, सो राइट नाउ वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स अनदर ट्रैक। हमारे पास दरिन निजात के ओएसटी के लिए रिक्वेस्ट आई थी, मानू ने हमें मैसेज किया था। सो मानू इफ यू आर लिसनिंग दिस ट्रैक इज फॉर यू। मिलते हैं इस गाने के बाद।

0: Genie in radio.
1: FM 100's time check. It's 3 p.m.
2: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago.
3: Ahmed, hatu wahan se.
4: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
1: Like us on facebook.com/FM247365. Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
5: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.
6: Your favorite number on my fingertips. Catch your favorite number within no time. Genie in a radio. With your very own RJ, Jasmine.
0: Genie in a radio.

Alrighty, everyone, welcome back. You're listening to FM 100 Pakistan, and हमारे पास मारिया का मैसेज आया है. कह रही हैं कि जब मेरे पास पैसे नहीं होते तो मैं घर में फ्राइज बना लेती हूँ. ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. एंड इक्तदार का ओएसटी रिक्वेस्ट किया है, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. हमारे पास नायमा ने मैसेज किया है. नायमा हैज टेक्स्टेड इन एंड शी हैज रिक्वेस्टेड फॉर द ओएसटी ऑफ मिट्टी दे बावे, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज एज वेल. सो जनाब, 3:09 हो गए हैं और आप लोगों से हम यही पूछ रहे हैं, आपने बताना है कि जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं, कम होते हैं, सो वॉट इज योर फेवरेट ब्रोक फूड, जिसमें आप जो हैं वो कहते हैं कि यार ये खाना जो है हम खा लेते हैं क्योंकि एक तो बजट कम है लेकिन टेस्ट अच्छा है. लेट अस नो, घर में कुछ बना लेते हैं तो वो भी बता सकते हैं पेज पे मैसेज करके या फिर 3636 पर. अच्छा, राइट नाउ वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स अनदर ट्रैक. ओके, हमारे पास जो है सज्जाद अली के सॉन्ग के लिए रिक्वेस्ट आई थी और ये हमें काशिफ ने मैसेज करके बोला था. सो दिस ट्रैक इज फॉर यू काशिफ. मिलते हैं इस गाने के बाद.

0: space your text message. Send it to 3636.
1: 1, 2, 3, go!
2: Just blaze.
3: Yeah. Do not touch that dial.
4: Stay tuned to FM 100.
0: The heartbeat of Pakistan. This is FM 100.
5: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
6: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
7: कहीं फिर से रहमो चाचा, अपना डांगा लेकर न आ जाए. वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे. मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ.
8: आम तौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है. दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं. बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है. आए इसे यकीनी बनाए. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पर कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
9: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
0: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365.
10: The only choice for Radio 100 FM.
0: KHI space your text message. Send it to 3636.
11: Genie in Radio.

0: Radio.
1: Alrighty, Janab. Welcome back, आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान एंड आप लोग बिल्कुल हमें मैसेजेस कर रहे हैं 3636 पर एंड हम लोग यही बात कर रहे हैं व्हाट इज योर फेवरेट ब्रोक फूड लेट अस नो ऑन 3636 और facebook.com/rj.jasmine इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हैं आप बाय द नेम ऑफ जैसमिन अंडरस्कोर अहमद एंड हाँ तो जब होती है गुर्बत तो फिर कौन सा ऐसा फेवरेट फूड है आपका जो आप घर में खुद भी बना लेते हैं या फिर कोई ऐसा फेवरेट स्पॉट हो जहां पे आप कहते हो कि यार चलो पैसे कम है टेंशन नहीं है इधर खाना अच्छा मिल जाएगा आप हमें बता सकते हैं अच्छा हमारे पास रिक्वेस्ट काफी सारी आ चुकी हैं एक तो मारिया ने इक्तदार का ओएसटी रिक्वेस्ट किया था एंड मिट्टी दे बावे इसका भी हमारे पास जो है ओएसटी की रिक्वेस्ट आई है और जरीन नूर ने कहा है आपकी इज्जत का ओएसटी प्ले कर दें चले ठीक है डन हो गया है अभी हम क्या कर रहे हैं अभी हम एक और ओएसटी की तरफ जा रहे हैं विच इज मिट्टी दबावे सही है और इसके बाद जो है हम मारिया का ओएसटी प्ले करेंगे जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था इक्तदार का तो हमारे साथ रहेगा फिर जरीन नूर आपकी रिक्वेस्ट आएगी मिलते हैं इस गाने के बाद

your favorite number on my fingertips. Catch your favorite number within no time. Genie in a radio. With your very own RJ, Jasmine. Alrighty everyone, welcome back. आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान एंड आप लोग को बताते चलें कि आज हम बात कर रहे हैं अबाउट आपका जो है वो गुर्बत वाला खाना जो है क्या है. आप हमें बता रहे हैं पेज पे भी और 3636 पर भी एंड इंस्टाग्राम पे भी. अच्छा सो हमारे पास इंस्टाग्राम पे भी काफी सारे कमेंट्स आए हैं और हमारे पास जावेद का रिप्लाई है. उन्होंने कहा कि गुर्बत का जो खाना है दैट इज चिकन रोल. ओके थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज एंड वी हैव गॉट अ मैसेज हियर फ्रॉम तौसीफ अली खान एंड लिखा है दाल चावल. यार दाल चावल इज समथिंग जो हमारे पास मेजॉरिटी आंसर्स आए हैं दाल चावल के हवाले से. अच्छा दो चीजों के मुझे ज्यादा आज वो मिले हैं मैसेज. एक तो ये दाल चावल सबसे ज्यादा ये जीत गया है. दाल चावल हमारा मासूम खाने की चीज है ये. एंड सेकेंड इज बन कबाब क्योंकि हमें अभी मैसेज आया है आयशा का. उन्होंने कहा है कि बन कबाब को एक फेवरेट स्पॉट है उनका. वहां पे वो कह रही है कि वो जो उसकी चटनी होती है दैट इज सो अमेजिंग. और समझे कि सस्ता खाने में मतलब कम पैसे में टिकाऊ खाना मिल जाता है. ओके दैट्स नाइस थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. सो जनाब 3:26 हो गए हैं. अभी हम जाएंगे मारिया की रिक्वेस्ट की तरफ. मारिया इफ यूर लिसनिंग आपका ये सॉन्ग है इक्तदार का ओएसटी. मिलते हैं इस गाने के बाद. साथ रहेगा.

0: एक चूंटी जितनी हैसियत है तुम्हारी, यूं मसल के फेंक भी दूंगा ना, कोई ढूंढ नहीं पाएगा तुम।
1: तुम्हारे भाई ने गुनाह किया और उसकी सजा उससे मिलकर रहेगी।

0: KHI space your text message. Send it to 3636.
1: अजरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: कपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उमरा लिखे 02111182725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। कपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं।
0: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM247365.
4: Your favorite number on my fingertips. Catch your favorite number within no time. Genie in a radio with your very own RJ Jasmine.

Alrighty, everyone. Welcome back up to FM 100 Pakistan. And it's 38 minutes past 3 on the dial right now. Aur aaj hum baat kar rahe hain about your favorite broke food. Yani jab aapke paas paise jo hain bilkul kam hote hain aur garibi full on hoti hai, to aapka favorite wo khana kya hai? Aap kya khate hain us time? हमारे पास जो है इंस्टा पे भी काफी सारे जो है वो मैसेजेस आ रहे हैं. एंड ओके, सफियान ने हमें मैसेज किया, उन्होंने कहा बिरयानी. वैसे यार बिरयानी तो नहीं है गुरबत वाला खाना. अब थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. एंड हमारे पास कमेंट आया किसी का, उन्होंने कहा है पठान का पराठा विद इमली चटनी एंड सम अनियन. ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज एज वेल. सो गाइज, राइट नाउ वी आर मूविंग ऑन टूवर्ड्स अनदर ट्रैक. एंड अभी जो हम सॉन्ग प्ले करेंगे, ये हमारे पास रिक्वेस्ट आई हुई थी रमशा की. एंड कलाबाज दिल जो है उन्होंने रिक्वेस्ट किया था. सो इफ यू आर लिसनिंग दिस ट्रैक इज फॉर यू. मिलते हैं इस गाने के बाद, हमारे साथ रहिएगा. और अगर जल्दी मैसेज कर सकते हैं तो कर दें, क्योंकि टाइम कम है.

0: FM 100's time check. It's 4 p.m.
1: अजरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
2: अहमद, हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
0: facebook.com/fm247365 fm247365 fm100 31 saal fm100 aapki awaaz. Assalamu alaikum pakistan.
4: Assalamu alaikum pakistan.

0: बेबे।
1: अजरा बहन जरा बात तो सुनो, हटो पीछे, भागो।
2: अहमद हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: कपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उमरा लिखे 02111182725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। कपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमरा पर जाएं।
5: FM 24/7 365 FM 24/7 365
6: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
7: Only music, no RJ talk.
6: This is FM 100.
8: Come on.

तुम रस्मन ही पूछ लेना मुझसे हाल मेरा, मैं मुस्कुरा कर गम छुपा कर ही जवाब दूंगा, मैं यही करता आया हूँ, यह है कमाल मेरा।

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: हुर्मत रसूल का तकाजा है कि तौहीन रिसालत से मुतालिक किसी भी खबर को बिना किसी तस्दीक के ना फैलाएं। ये पैगाम मुफादे आमा के लिए वजारत इत्तिलात और नशरियात व कौमी विरसा और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
1: कुरानी आयात और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295B के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिले सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
3: Across the nation.
4: This is FM 100. FM 100. 100.
5: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहां से।
0: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
6: 11.99%, 11.99%।
7: ओ भाई, क्या है ये 11.99%?
8: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
9: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइतों से वाबित लागू है।
6: 11.99%।
10: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा।
11: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
12: आज सुबह किसी का व्हाट्सएप और किसी का बैंक अकाउंट हैक हो गया और कहीं एक बिजनेस साइबर अटैक का शिकार बन गया। साइबर अटैक सिर्फ सिस्टम्स को नहीं, जिंदगियों को भी टारगेट करते हैं। इसीलिए इग्नाइट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम ब्रिंग्स यू द 5th डिजिटल पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन। हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स, रेड एंड ब्लू टीमिंग कॉम्पिटिशन्स। अगर आप स्टूडेंट हैं, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल या एथिकल हैकर, पाकिस्तान के अगले साइबर डिफेंडर बनिए। रजिस्टर नाउ एट cyberhackathon.pk।
11: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
13: पाकिस्तान इज बिल्डिंग अ सेफर स्मार्टर डिजिटल इकोसिस्टम एंड वी नीड योर टैलेंट। Step up, build a cyber safe life and unlock premier careers in cyber security at the 5th Digital Pakistan Cyber Security Hackathon. Organized by Ignite under the Ministry of IT and Telecom, join hands-on training workshops in 16 cities and secure your future. Registrations are open now at cyberhackathon.pk.
11: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
14: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन व्हिच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशन्स ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
15: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मरतबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमात, तो फिर कहीं और क्यों जाएं? तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक, Nizan Bank, the premier Islamic bank.
11: This program is brought to you by
2: Sir Sabz Nitro Foss ko laga aur jeet ta ja
11: and
3: Tabal Family Mixture line Umrah par jaye
11: and HBL Freedom Account jahan khab wahan HBL.
16: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज़ इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
1: मुफाद आमा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
17: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
18: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 5:30 p.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Battery hai to dil ko hai aaram.
2: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: 11.99%
5: ओ भाई, क्या है ये 11.99%?
6: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
7: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
4: 11.99%।
8: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
9: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
10: सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें, या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।
9: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: अपने कमाल बैकअप से AGS ट्यूबलेस दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेस बैटरी, दिल को है आराम।
1: This program is brought to you by
2: Sir Sabz Nitro Force ko laga aur jeet taja
1: and
3: Kabal Family Mixture line Umrah par jaye
4: and HBL Freedom Account jahan khab wahan HBL.

Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो।
1: हटू पीछे भागो।
2: अहमद हटू वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: 11.99% 11.99%
5: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शरायत और ज़वाबित लागू है।
7: 11.99% 100 FM HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।

0: secure.
1: Join the 5th Digital Pakistan Cybersecurity Hackathon. Hands-on workshops and awareness sessions across 16 cities of Pakistan. Register now at cyberhackathon.pk.
2: An initiative of Ministry of IT and Telecom and Ignite.
3: Fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
4: This program is brought to you by
5: Sarsabz Nitro Falls ko laga aur jeeta ja
4: and
6: Tabal Family Mixture laye umrah par jaye
4: and
3: HBL Freedom Account jahan khwab wahan HBL
4: and
7: AGS tubular battery hai to dil ko hai
8: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रास्तों पे ले जा सकते हैं जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है
9: हमने अपने आप को से तीन बार मौत देखा
10: टाइम से मनु ऐसे ही कि मैं हूं कब्र से चला गया मैं नहीं बचा
11: फिर उन्होंने साडी वीडियो बनाई सानू मारया सानू कुटिया
8: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें
12: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा
8: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देभाव के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खसूसी टास्क फोर्स का क्याम मुलगीर क्रैकडाउन जारी एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज गिरफ्तारियां जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं अंदरूनों बैरूने मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें मकामात मुकद्दसा की ज्यारत को जाने वाले जायरीन भी कानूनी जराए इख्तियार करें इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचें ख्वाब जरूर देखें बेहतर रास्ता चुनें हुकूमत पाकिस्तान
13: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया
14: बैंकिंग सहूलियात जैसा कि माइक्रो फाइनेंस एप्स जैज कैश इजी पैसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अमूमन सारिफ के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ मुंसलिक होते हैं जिसके जरिए ये अकाउंट्स न सिर्फ फाल किए जाते हैं बल्कि किसी तब्दीली की सूरत में तस्दीक के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं अगर कोई सिम आपके नाम से हटा दी जाए या तवील अरसे तक इस्तेमाल न होने की वजह से रिसाइकल होकर दोबारा जारी कर दी जाए तो यही नंबर किसी दूसरे शख्स को दिया जा सकता है और अगर बर वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की जाए तो नया सारिफ इस नंबर से मुंसलिक आपके सोशल या दिगर डिजिटल अकाउंट्स तक रसाई कर सकता है ऐसे अकाउंट से की जाने वाली किसी भी गैर कानूनी गुमराह कोनी या तौहीन आमेज सरगर्मी की जिम्मेदारी असल अकाउंट होल्डर पर आयद हो सकती है जिसके नतीजे में कानूनी पेचीदगियां और शोहरत को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है इसी तरह अगर पुराने नंबर से मुंसलिक बैंकिंग या मालियाती एप्स महफूज न की जाए तो माली धोखाधही और गलत इस्तेमाल का खतरा भी पैदा हो सकता है अपने ऑनलाइन तहफ्फुज के पेश नजर ये इकदाम जरूर उठाएं जैसे ही कोई नंबर अपने नाम से हटाएं या तब्दील करें फौरन अपने तमाम सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपडेट कर लें अपने बैंक माइक्रो फाइनेंस और पेमेंट एप्स में हमेशा अपना मौजूदा और फाल नंबर रखें अकाउंट्स में मजबूत सिक्योरिटी फीचर्स फाल करें जैसा कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और अकाउंट रिकवरी की सेटिंग्स डिजिटल तहफ्फुज़ का आगाज सिम के जिम्मेदाराना इस्तेमाल से ही मुमकिन है बर वक्त और पेश के इकदाम आपकी शनाख्त माली तहफ्फुज़ और कानूनी हैसियत में मददगार साबित होते हैं डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए
15: FM 24/7/365 FM 24/7/365

0: your location for maximum music.
1: It's 24 hours, non-stop vibration. Connecting you.
2: Connecting.
1: Holding you.
2: Holding.
1: With FM 100.
3: FM 100.
4: FM 100.
5: It's 6 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan Khab, Vahan HBL.
6: Azra Behen, Zara baat to suno. Hatu piche, bhago.
7: Ahmed, hatu wahan se.
8: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
9: 11.99%
10: ओ भाई, क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
11: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शरायत और ज़वाबित लागू है।
9: 11.99%।
12: खालिस अज्जा, भरोसे मंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
13: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
14: 100 FM।
13: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट। जहां ख्वाब, वहां HBL।
15: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
13: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट। जहां ख्वाब, वहां HBL।
16: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मर्तबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमत, तो फिर कहीं और क्यों जाएं? तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक, मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
5: This program is brought to you by
17: Sarsabz Nitro Foss ko laga aur jeet taja
5: and
17: Tabal Family Mixture line Umrah par jayein
5: and
13: HBL Freedom Account Jahan Khwab Wahan HBL
5: and
18: AGS Tubular Battery hai to dil to hai aaram
11: and purani gaadi chhodo nayi gaadi ka khwab pura karne chalo kareebi HBL branch chalo ya apply karo online
5: and
16: Pakistan ka best bank Nizan Bank, the premier Islamic bank.
5: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
14: FM247365.
19: FM 100.
20: 31 saal. FM 100. Aapki awaaz. Assalamu alaikum. Pakistan.
21: Assalamu alaikum, Pakistan.
22: Pakistan.
23: Across the nation, there is only 100 FM.

0: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
0: This program is brought to you by
3: Sarsabz Nitro Foss ko laga aur jeet taaja
0: and
4: Tabal Family Mixture laaye umrah par jaye
0: and
1: HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL
0: and
5: AGS tubular battery hai to dil ko hai
0: and
6: purani gaadi chodo nayi gaadi ka khwab pura karne chalo kareebi HBL branch chalo ya apply karo online
0: and
7: Pakistan ka best bank Nizan Bank, the premier Islamic bank.
8: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
9: FM 247365.

0: your location for maximum music.
1: It's 6:30 p.m. This time check is brought to you by
2: AGS Tubular Battery hai to dil ko hai aaram.
3: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
4: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
5: 11.99%
6: ओ भाई, क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
7: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शरायत और ज़वाबित लागू है।
5: 11.99%।
8: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
9: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
10: 100 FM।
9: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
11: कपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उमरा लिखे 02111182725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। कपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं।
9: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
12: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन व्हिच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
13: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मर्तबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमत, तो फिर कहीं और क्यों जाएं? तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियत। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक, मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।

0: जरा बहन जरा बात तो सुनो।
1: हटो पीछे, भागो।
2: अहमद हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: 11.99% 11.99%।
5: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
7: 11.99% 100 FM।
8: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
7: 100 FM।
8: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
7: 100 FM।
8: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
9: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
10: सरसब्ज नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा
9: एंड टबाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं
8: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहाँ HBL
11: एंड AGS ट्यूबुलर बैटरी है तो दिल तो है आराम
6: एंड पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन
9: एंड पाकिस्तान का बेस्ट बैंक निजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
7: 100 FM।
12: हाय फ्रेंड्स, आई एम मिकाल ज़ुल्फिकार एंड टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
9: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
7: Like us on facebook.com/FM247365 FM247365

0: AM. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan Khwab, Wahan HBL. This program was brought to you by
1: Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeet taja
0: and
2: Tabal Family Mixture laaye Umrah par jaye
0: and HBL Freedom Account. Jahan Khwab, Wahan HBL.
3: जरा बहन जरा बात तो सुनो, हटो पीछे, भागो। अहमद हटो वहां से।
4: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
5: 11.99%
6: ओ भाई क्या है ये 11.99%?
7: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
8: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शरायत और ज़वाबित लागू है।
5: 11.99%।
9: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? चौबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और चौबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
10: 100 FM।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
10: 100 FM।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
10: 100 FM।
11: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मर्तबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमत, तो फिर कहीं और क्यों जाएं? तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
0: This program is brought to you by
11: Pakistan ka best bank, Mizan Bank, the premier Islamic bank.
8: And purani gaadi chodo, nayi gaadi ka khwab pura karne chalo, kareebi HBL branch chalo ya apply karo online.

FM 24/7 365. FM 24/7 365. Today's hit music.

0: It's 7:30 PM. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Battery hai to, dil to hai aaram.
0: This program was brought to you by
1: AGS Tubular Battery hai to, dil to hai aaram.
2: Azra behen, zara baat to suno. Hato piche, bhago. अहमद हटो वहां से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: 11.9% 11.9%
5: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
4: 11.99%।
7: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तन बहुत अहमियत रखता है, शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा।
8: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
9: 100 FM।
8: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
10: कपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उमरा लिखे 02111182725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। कपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमरा पर जाएं।
11: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मरतबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमत, तो फिर कहीं और क्यों जाए। तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक, मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: हुर्मत रसूल का तकाजा है कि तौहीन रिसालत से मुतालिक किसी भी खबर को बिना किसी तस्दीक के ना फैलाएं। ये पैगाम मुफाद आमा के लिए वजारत इत्तिलात नशरियात व कौमी विरसा और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
1: कुरानी आयात और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295B के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिले सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
3: This program was brought to you by Pakistan ka best bank, Nizam Bank, the premier Islamic bank.
4: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
5: FM 247365. FM 100.
1: 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
5: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: FM 24/7/365

It's 8:30 p.m. This time check is brought to you by

0: Public service message is brought to you by FM 100. रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना. इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए. ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए.
1: facebook.com/fm247365
2: You're listening to the greatest radio station.

your location for maximum music.

でした。

मुंबई जनाब, वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 और साथ साथ जनाब मैसेजेस भी पहुंचना शुरू हो गए हैं, फेसबुक पर भी, मैसेंजर पर भी, व्हाट्सएप पर भी, हर जगह माशाल्लाह, क्या बात है। अच्छा जी, सबसे पहले मैसेज कर दिया बिलावल भाई ने। बिलावल साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है अयाज भाई, आपको, सुम्बुल जी को, कादिर भाई और तमाम प्यारे लिसनर्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तबीयत ठीक होगी और फिट फाट होंगे, काफी बेहतर है। फिट फाट वाली बात मैं नहीं कह सकता, लेकिन काफी बेहतर हो गई है। अच्छा जनाब, और सलाम कैसे हैं? बहुत दुआ आपके लिए और सबको सलाम। जरीनूर, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जनाब, हे सलाम जानिया, बहुत इंतजार करवाते हो, जावे हर जाई ढोला। फुल लाडला चल रहा है, कोई फुल लाडला चल रही है या चल रहा है, नाम नहीं लिखा भाई, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा तानिया जी, क्या हाल है? तानिया हसन हमें सुन रही है। बस जी तानिया जी, खुश रहे आप, और आज कह रही मैं सुकून है, इत्मीनान के साथ सुन रही हूँ। बस इसी तरह आप सुनते रहे, सारे गाने मैंने आज आपको डेडिकेट कर देने। और इसके अलावा जनाब, मिसेस फारूक तशरीफ लाइए, गला थोड़ा मेरा करता रहेगा यूं। कैसे मिजाज है? मेरे मिजाज बिल्कुल ठीक है, लेकिन सबसे पहले वालेकुम सलाम और बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार आपके मैसेज में, बहुत शुक्रिया। और संजू जी आ गई हैं, संजीता जी क्या कह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, तबीयत कैसी? काफी बेहतर है, लेकिन अभी भी वो वाली बात नहीं है जो होती है, समझ रही ना। आज मेरी पहचान, मेरी रेडियो एफ एम 100 101.28 साल मुकम्मल होने की मुबारकबाद देती हूँ। अच्छा, चलो अच्छा हो गया जनाब, और ट्रैक पसंद आ गया अभी खास तौर पे इनको, और माजमीन को खास तौर पर 101 की सालगिरह मुबारक। ठीक है जनाब, ठीक है, सारे हमारे चैनल्स हैं। अच्छा जी, और कौन आ गया भाई? फरीन शहजादी आ गई। शहजादी जी कैसी हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम, लेजेंड सुपरस्टार क्या? अरे सरकार, आप ऐसी इतनी तारीफें कर देती, मैं बताऊं प्रोग्राम ही आगे नहीं हो रहा होता। अच्छा, तबीयत बिल्कुल ठीक, और नजर उतारा करें अपनी रोज जनाब। अच्छा जी, चले आप लोग दुआ करते हैं, यही बड़ी बात है, और इसी बात पर ये ट्रैक जनाब आप सबको डेडिकेट करते हैं, खासतौर पर फरीन शहजादी हमें सुन रही है। पंजाबी गाने पसंद आते हैं इनको, तो आपके लिए।

जना वेलकम बैक सुन रहे हैं FM 100 और साथ साथ में आपको बता दूं पूरी महफिल जम गई है, सारे लोग आ गए हैं, जो जो मुझे सुन रहे होते हैं सबके मैसेज पहुंच गए हैं। यूके से नादिया मलिक भी आ गई हैं और भाई फुल टाइम जो है ना कुछ बीमार वाली कैफियत लग रही है, स्ट्रेस था अब कहीं जाके उतरा है लेकिन जरा लेजी फील हो रहा है, तो इनके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला इनको सेहत दे, आमीन सुम्मा आमीन, सबको सलाम दुआ भी कह दी इन्होंने। करें इस हालत में भी मैं अपने भाई का शो सुन रही हूं, हाय मेरी प्यारी सी बहन खुश रहो। अच्छा जी, इसके अलावा बिलावल कह रहे हैं सर हमारी टीम इंडिया के खिलाफ जरूरत से ज्यादा प्रेशर ले लेती है। मैं कह रहा हूं कि इनको क्या करें यार, प्रेशर कैसे खत्म होगा इनका। हालांकि प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, इतना प्रेशर क्या होना है। चलो उम्मीद करते हैं हम नए बच्चे हैं शायद कुछ अच्छा खेल लें, लेकिन हम हमेशा उम्मीद करते हैं हार जाते हैं। चलो जी खैर कोई नहीं। आए संजीदा जी क्या कहने, गाने पसंद आ रहे हैं संजीदा जी को, और कहनी बहुत प्यार दुआएं नादिया के लिए। नादिया जी देखें आपके लिए दुआएं आना शुरू हो गई, इंशाल्लाह आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। अच्छा जी, और हमारी क्यूट सी प्यारी सी तानिया हुसैन हमें सुन रही हैं और उनकी दोस्त अफशा भी सुन रही है। चलो यार ये अच्छा हो गया, पूरी फैमिली जो है ना साथ मिलकर सब सुन रहे हैं। जनाब इसके अलावा कह रही आयाज आपने जालिम वाला सॉन्ग लगाया था, मुझे याद है इंग्लिश सॉन्ग था, प्ले कर दें। हाँ वो बिल्कुल था, मैं प्ले कर दूंगा, आप टेंशन ना लें। फिलहाल मैं आपको एक और चीज सुना रहा हूं, बस आप जमा करते जाए सामान, आप चेक करें इसको।

दिल पार्टी जा। जनाब सुन रहे FM 100 और साथ साथ मैसेजेस आपके पहुंचते हैं। अच्छा स्पेस टेक्स्ट करेंगे, सेंड करेंगे 3636। रमजान पठान कह रहे हैं आज भाई आपको, बिलावल, संजू और सब ने सर को सलाम। आज हम आपसे कोई रिक्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम आपसे नाराज हैं। चलो रमजान पठान शुक्र है, कोई तो नाराज हुआ। आजकल नाराजगी का फैशन भी खत्म हो गया। पहले वक्तों में होते थे लोग नाराज होते थे, बोतल क्यों नहीं पूछी तुमने। अब ये कोई नाराज ही नहीं हो रहा यार, हर कोई अपने चक्कर में है। अच्छा भाई यार, यार शो का ना नाम मस्का शो का रखो क्योंकि नजर लग गई फजूल बात करते हैं आप भी, बन जाते हैं नो मस्का शोर नया। बेटा तुम वक्त पिटी के अगर लगा लेते आज ये कैफियत जहनी नहीं होती। जहनी कमजोरी का सारा असर लग रहा तुम्हारे मैसेज से। खुश रहा करो मेरा बेटा, खुश रहा करो। चार दिन की जिंदगी है, यही हालात रहे तो तीन दिन रह जाएंगे तेरे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, खुश रहे, जिंदगी बढ़ती है। और आजकल वैसे एक बात मैंने देखी, एक दूसरे से सड़े हैं, दोस्त बने हुए भी हैं तो भी एक दूसरे के साथ। ऐसा क्यों है यार, दोस्त बन के दुश्मन बने घूम रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, प्यार मोहब्बत जैसा दिल में है वैसे सामने भी होना चाहिए। ऐसे मेरा दिल चाह रहा है जरा थोड़ा सा लेक्चर दे दो। अच्छा जनाब, और शुक्रिया अदा कर दिया किसने, नादिया मलिक ने संजीदा जी का। चलिए जी उनकी जानिब से भी थैंक्स, मैं अपनी तरफ से बोल देता हूँ। और गयासुद्दीन बलबन जो है वो हमें मुल्तान से सुन रहे हैं। गयास कैसे हो, क्या सूरत हाल है मौसमों की। आई क्यूट सी प्यारी सी मिस्टर फारूक भी आ गई हैं और पहले भी सलाम दुआ की और अब कह रही भाई शो बहुत खूब हो रहा है, खुश रहिए। और नादिया बहुत सारी दुआएं आपके लिए, मिस्टर फारूक की तरफ से भी बहुत दुआएं आ गई भाई आपके लिए। अच्छा जी अब कौन सा मैं ट्रैक प्ले करूं यार, ये मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त है और ये भी बहुत अच्छा आरजे है, इसका नाम है जैनुल आबिदीन और इनका ये गाना एक वक्त में बहुत हिट हुआ, दोबारा से इन्होंने जरा कुछ नए स्टाइल से बनाया इसको। तो जैन कीप इट अप, इसी तरह अच्छा अच्छा काम रेडियो पर भी करते रहो और म्यूजिक में भी करते रहो। और आप ही को ये ट्रैक मैं डेडिकेट कर देता हूं।

शर्मा जना वेलकम बैक, सुन रहे हैं एफएम 100 और साथ ही साथ बहुत ही प्यार से मोहब्बतों से मैसेज आना शुरू हो गए हैं। नादिया हमें मैसेज कर रही है, नादिया 3636 पे, नादिया मलिक यूके में, ये दूसरी नादिया जो 3636 पर हमें मैसेज कर रही है और इतना सारा प्यार, इतनी सारी दुआएं और गानों की बहुत तारीफ करी। और आज भी रोज आया कर, मैं रोज ही आता हूँ, कभी कभी बीच में हो जाती छुट्टी, ये वाली बात भी सही है। बहुत कोशिश करता हूँ कवर करने की लेकिन नहीं हो पाती, सच बात ऑन एयर बोल देता हूँ। अच्छा भाई, इसके अलावा फयाज भाई कह रहे हैं मौसम मुल्तान का बहुत जबरदस्त हो गया, चलो ठीक हो गया जनाब। और मिसेस फारूक कह रही है जी बिल्कुल बहुत अच्छा शो करते हैं, जब समिया नहीं होती तो मैं उनका, ठीक हो गया जनाब, आपकी अपनी मर्जी, आपकी अपनी बातचात। और रुबाब जी आ गई है, इतने सारे प्यार से मैसेज कर दिए, सलाम क्या हाल है, और हमेशा संजीदा को बोलती हूँ, वो शायद नहीं बोलती, सलाम का शायद बोल देती है, नहीं नहीं बोल देती है, बोल देती है, पहुंच जाता है आपका सलाम रुबाब जी, टेंशन ना ले आप। हाय, और हुमा जी गाने बहुत इंजॉय करें, हुमा जी बस इसी तरह खुश रहे। एक और खूबसूरत गाना मैं आप, ये उन तमाम दोस्तों के लिए जो दोस्त बने हुए हैं, अभी मैंने जिक्र किया लेकिन अंदर से कोई खुश नहीं, अंदर से नहीं, अजीब अजीब कहानियां चल रही, तो इस तरह के जितने ग्रुप हैं, जितने दोस्त हैं, उन सबको मैं, ये जो सॉन्ग है ये मैं डेडिकेट करने वाला हूं, और वो है कैसे है?

क्या बात है जबरदस्त शायरी, पहली दफा मैंने अपने शो में प्ले किया, लेकिन जो हालात चल रहे हैं वाकई में लग रहा गाना बड़ा पसंद आ गया। संजीदा जी बहुत पसंद करी इस ट्रैक, खैर दिल को भा गया ये ट्रैक, बस जी फिर की शीट में रखा करेंगे। और तानिया जी कह रही है कि ये जो चुटकले आते हैं ना आपके,

प्रोग्राम में रौनक डाल देते हैं, मजा आता है। बिल्कुल जनाब, थोड़ा तबीयत सेट रही हो तो फिर और जरा मैं शोखर द्वारा हो जाता हूँ जरा, लेकिन आज मैं जरा तमीज के साथ। लेकिन फिर भी आप लोग पसंद करते हैं तो बहुत शुक्रिया। मैं तो ये सोच रहा था कि लोग माइंड ना कर जाएं, लेकिन चले खैर, लोग भी डीटे मेरी तरह। एक आध बंदा है वो मस्का बोलता रहता मुझे, और मैं भी देखो कितना डीटू पढ़ता रहता हूँ पूरा मैसेज, दिल में सोचता होगा नहीं पड़ेगा ये, लेकिन नहीं, आपका भाई टिका के। अच्छा जनाब, इतनी तारीफें तानिया जी ने कर दी हैं, तो एक तानिया जी का फेवरेट गाना भी आज हमारी क्यू शीट में रखा हुआ है, तो ये मैं बिल्कुल उनको मैं डेडिकेट करने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले बिलावल भाई कह रहे हैं रमजान पठार और अंजलिना को सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, अंजलिना का भी मैसेज आ गया, हार्ट टचिंग सॉन्ग है ये तो। अंजलिना जी बस अब ये क्यू शीट में शामिल हो गया। अच्छा जी, और इसके अलावा नादिया मलिक जो है वो यूके से मैसेज कर रही है, और वो उन्होंने खास तौर पे कहा कि एज इट इज आपने बोलना है कि फारूक साहब की जो बेगम है उनको थैंक्स कह दें। तो फारूक साहब की बेगम सुन रही है हमें बहुत प्यार से, मिस्टर फारूक सुन लिया आपने, आपके लिए था ये मैसेज। अच्छा जनाब, इसके अलावा आपका शोखा अंदाज शो की जान है, अल्लाह नहीं करो संजीदा, शर्माता हूं मैं आप। अच्छा जी, क्या सॉन्ग है, दिल की तर्जमानी कर रहा है। और जनाब ये मैंने आप ही लोगों के लिए लगाया था। अच्छा जनाब, नेक्स्ट ट्रैक की जानकारी बढ़ते हैं, और तानिया हसन हमें सुन रही हैं, तो उन्हीं को मैं ये डेडिकेट कर देता हूं, और वो है कैसे है?

0: FM 100's time check. It's 10 p.m.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM 247365.
3: FM 100.
0: 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.
3: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.
4: एक्टिव यमी.

प्लीज थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। प्लीज कोशिश करता रहता हूँ मैं, हर तरह का जो है ना म्यूजिक इसके अंदर शामिल कर लूंगा, सुकून वाले भी हों, टेंशन वाले भी हों, हर तरह के हों। एक और बहुत ही कूल सा नंबर शामिल करता हूँ, और वो है कैसे,

शर्मा जी, वेलकम बैक सुन रहे FM 100। और जनाब मिसेस फारूक क्या कह रही है भाई, तानिया को भी प्लीज सलाम पेश कर दीजिए। मैं अभी प्लेट में रख के पेश करता हूँ। सलाम अलैकुम तानिया जी, उनकी जानिब से वालेकुम सलाम। ठीक हो गया? अच्छा जी, और इसके अलावा संजू क्या कह रही है? वाह समी मेरी वाह, पहली बार दिल हारी, अच्छा सॉन्ग है, बड़ा आसान, आपने पसंद किया, बहुत शुक्रिया आपका। और मिसेस फारूक भी कह रही है कि सुकून से गाया, सुकून से सारे गाने गाते, कौन से कील पे बैठ के गाएंगे, सारे सुकून से गाने भाई। मिसेस फारूक क्या कह रहे हैं आपके? अच्छा जी, और महाजबीन कह रही है नाइस।

हाय जनाब, वेलकम बैक टू एफएम 100 और साथ ही साथ जनाब मैसेजेस भी पहुंच रहे 3636 पर। हेलो प्रिंस अयाज, एफएम फैमिली को सलाम, और अयाज अहमद टू एफएम 100 की जान है। महरीन, महरीन जी बहुत शुक्रिया, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। और रमजान पठान कह रहे हैं एंजेलिना आप नाम तो मुसलमानों वाला रख लेती। रमजान भाई आपका क्या नादरा में कोई स्टॉल लगा हुआ है या आपने इनका शनाख्ती कार्ड बनाना है क्या? उनकी जिंदगी है एंजेलिना, मुसलमानों का भी नाम है वैसे। कैसे अंदाजा लगाया रमजान भाई आपने, कैसे अंदाजा लगाया? अच्छा जी, नादिया मलिक यूके से कह रही है कि भाई ड्रामा बताएं भाई कौन कौन सा आजकल आप लोग देख रहे हैं, और मुझे मशवरा भी दिया उन्होंने, कहा कि भाई आप ना बजाय क्रिकेट के ड्रामे देखें। नहीं करें सरकार, नहीं करें, भले पाकिस्तानी टीम हार रही हो लेकिन क्रिकेट जो क्रिकेट है ना इससे मुझे लव है। मैं तो भाई वो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मैचेस हो रहे थे वो भी मैंने सुबह उठ के देख लिया। मैं क्रिकेट लवर आदमी हूँ, अपनी टीम बुरा खेल रही तो इसका मतलब ये तो नहीं कि क्रिकेट को खुदा हाफिज कह दें, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बिलावल भाई आप क्या कहते हैं इस बारे में, भले अपनी टीम खराब परफॉर्मेंस दे रही हो लेकिन क्रिकेट से तो प्यार है भैया। बॉलिंग कोई करा रहा है, कोई अच्छी बॉलिंग करा रहा है, तारीफ करें यार जो बैटिंग कोई अच्छे बड़े बड़े बाहर के प्लेयर्स हैं। कोहली भाई ने अभी सेंचुरी बनाई यार, मैं तो उनका वैसे भी फैन था, और अच्छे लग रहे हैं यार। तो इसमें कोई बाउंड्री नहीं है भाई, एक आर्टिस्ट में और एक क्रिकेटर्स में या प्लेयर्स में, इनमें कोई बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। जो अच्छा खेल रहा है वो सबके लिए, क्या कहते हैं इस बारे में आप? ड्रामों की जहां तक ताल्लुक है भाई ड्रामा बताएं भाई, जो लोग नादिया जी ने कर दिया भाई आजकल कौन कौन से ड्रामे देख रहे हैं आप बता सकते हैं? अच्छा जी, आज तो आपने कमाल कर दिया और कह रहे दिल को छूती शारी वाले सॉन्ग लगाए हैं। चलो जी बड़ी मेहरबानी, कोशिश करता हूँ अच्छे अच्छे ट्रैक्स हो, प्रोग्राम अच्छा गुजरे, वक्त अच्छा गुजरे। और इसके अलावा ये ट्रैक भी आपको पसंद आ गया। इसके अलावा तानिया जी कह रही भैया मेरी दोस्ती हो गई है मिस्टर फारूक से, क्या कहने भैया, क्या कहने, दोस्तियां होनी फुल टाइम। आए थोड़ा सा माहौल चेंज। गयासुद्दीन बलमन बहुत शुक्रिया, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है इनको भी। थोड़ा सा ये गाना मैं आपको सुनाता हूँ, गाना क्या है कवाली स्टाइल गाना, चेक करें आप।

0: yummy.
1: Zabar.

क्या कहने जनाब, इस तबील कवाली है, लेकिन थोड़ा सा मैंने कहा जरा माहौल चेंज करें और शामिल कर लें इनको भी। सलमा आगा याद आ गई है, उन्हीं का गाना था, खूबसूरत अंदाज फैज अली साहब का, खूबसूरत कवाली अंदाज में इन्होंने इस गाने को गाया और कोई 10-15 मिनट की कवाली है, लगा के सो जाएं आप, लेकिन स्टाइल बड़ा बहुत आला है। तानिया जी स्वीट सी हैं और हर एक का ख्याल रखती हैं। मैं उनको यही कह रहा हूं जो नहीं हमारे आ रहे, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, खुशी दे, और जो आ रहे हैं उनकी केयर करें हम। इसके अलावा जनाब सुंबल जी आ गई हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, और तवील मैसेज सबको सलाम दुआ। चलिए जनाब, वालेकुम सलाम। और एक बहुत अच्छे से आर्टिस्ट, बहुत अच्छे से दोस्त मेरे रेहान भाई ने मुझे फेसबुक पे मैसेज कर दिया।

0: वह जनाब मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, सुनते रहे एफएम 100 अयाज अहमद के साथ।
1: क्या कम उम्र बच्चियों से मशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र उनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की? उन पर काम का बोझ ना डाले, उनसे उनका बचपन ना छीन। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे जहनी, जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। बच्चों से मशक्कत लेना एक काबिल सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मशक्कत से इनकार करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
0: जनाब वेलकम बैक। और नादिया मलिक पूछ रही है कि ये वो वाला रेहान है जो स्कूल ऑफ आर्ट्स में? नहीं नहीं, ये वो वाला नहीं, वो ये रेहान जमाल है। बहुत ही जबरदस्त एक्टर भी हैं, बहुत अच्छे होस्ट हैं, बहुत अच्छे कॉमेडी भी करते हैं। मिसेस फारूक खुश रहे, आप खुश रहे मिसेस फारूक। इतनी सारी आप जो है ना वो एनर्जी दे देती है अपने मैसेज में, और कहनी भी शो सुनकर जो है एनर्जी आ जाती है बहुत खूब। और किसी बात पे हंस रही है, किस बात पे हंस रही है ये मुझे नहीं पता चल रहा। बस इतनी मैं फजूल बातें करता हूँ, कोई ना कोई बात ठीक लग गई होगी। अच्छा जनाब एक और बहुत ही कूल सा ट्रैक, और वो है कैसे

0: It's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: जना वेलकम बैक टू एफएम 100 और साथ ही साथ मैसेजेस आपके पास रहे 3636 पर नाइस सॉन्ग जरी नूर के भी मैसेज आ गए हैं और जनाबे वाला माजमीन क्या कह रही है, कह रही है मैं आज बहुत खूबसूरत मेलोडियस प्ले कर रहे हैं सॉन्ग और इसके अलावा योर सिलेक्शन इज सिंपली वाओ। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी माजमीन, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हुमा सिद्दीकी क्या कह रही है, आज मैं क्रिकेट में सिर्फ खूबसूरत बैट्समैन और बॉलर को ना अप्रिशिएट करती हूँ, वैसे मुझे अंग्रेज बहुत अच्छे लगते हैं। कालों को भी देखें आप, वो भी बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, पर भी तवज्जो दें थोड़ी सी। हुम्मा सिद्दीकी जी, श्रीलंकन प्लेयरों को भी देखें, शक्ल से अजीब से लग रहे हैं लेकिन उनका टैलेंट बहुत आला है, बहुत अच्छी बॉलिंग कराते हैं। मुरलीधरन को देखें, शक्ल से अजीब टाइप का लगता है लेकिन बॉलिंग ऐसी कमाल, सोच है आपकी। हाय हाय शब्बन भाई, हमें कॉल, शब्बन भाई कैसे हो, ठीक है, खैरियत से। रजा भाई दी ग्रेट, जब भी वो हमें सुनते हैं कॉल करते हैं। रजा भाई मैं पहचान गया आपकी कॉल आ गई। रजा भाई को अच्छे से मैं ट्रैक जो है ना डेडिकेट करता हूं। अच्छा जी, और कह रहे हैं कि भाई क्या संजू जी, मैं जैसे मैसेज करते मैं एज इट इज पढ़ता हूँ, इसमें क्या है? कहने की हद है, अब नहीं बोलेंगी गोरे अच्छे हैं। यार क्या है, मैं जो बात जो दे सही बात बोलता हूँ, गोरे होते तो फिर तो सारी टीम अच्छी होती गोरों की। दूसरे प्लेयर भी हैं जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, खेल खेल के काले हो गए, तो कोई वजह है ना जिसकी वजह से वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अच्छा जनाब, अब जरा नादिया जी की तरफ भी बढ़ते। नादिया जी बहुत सारे मैसेज कर रही हैं, कह रही है मैं भी नाम चेंज करने वाली हूं। नादिया से नैन्सी अजराम तो नहीं, रमजान पठान तुम बजाय मुसलमान करने निकले थे और सब लोग नाम चेंज कर रहे हैं, नहीं करो रमजान भाई, ऐसी बातें नहीं करते। अच्छा जी, अब जरा नेक्स्ट ट्रैक की जाने फिर बढ़ते हैं। यार जब कूल सी हमारी क्यू शीट बनी हुई है तो ये एक और अच्छा बहुत ही प्यारा सा, ये तो मेरे बहुत ही फेवरेट है और ये है अहमद जहांजेब, उनका ये ट्रैक ओए होए होए।

जिना वेलकम बैक, सुन रहे हैं एफएम 100। और आज कुछ मैसेजेस की तादाद बहुत ही ज्यादा, थैंक यू वेरी मच इतना प्यार इतनी मोहब्बत देने का। नादिया जी सीरियस हो गई है, नैन्सी राम रखने वाली है, नैन्सी वाह वाह वाह। और हमारा आ गया गुफरान, क्या हाल है गुफरान, ठीक हो, खैरियत से हो प्यारे से? इंजीनियर हमारे तशरीफ लागे, शिफ्ट चेंज हो रही है। नैन्सी कह रही हूँ, नाम नैन्सी होगा लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, ये बात सही है भाई, रख लो यार जो तुम्हारा दिल कर, नामों से क्या होता है। अच्छा जी, इसके अलावा जब बात कह रहे हैं रमजान भाई, दो घंटे का शो होता है, एंजॉय क्या करें किसी के दिल। हाँ यार, यही मैं उनको रमजान भाई को समझा रहा हूँ, मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी। कुछ नहीं यार, दूसरों को समझाने में लगे हुए हैं कि यूं रख लो, ये नाम कर लो, बुरी बात होती है, पर्सनल नहीं होना चाहिए। जब खासतौर पर आप किसी को जब जानते नहीं, आपको क्या पता कौन क्या है क्या नहीं है। बहरहाल जी, और संजू जी बहुत शुक्रिया, गाने पसंद आ रहे हैं, फुल टाइम गाने पसंद आ गए हैं। मैं क्या

0: भाई जनाब रजा भाई हमें सुनते हैं, हमेशा फोन करते हैं और बड़े मसरूफ आर्टिस्ट हो गए हैं। अच्छा भाई चाची हमें सुन रही है इतने प्यार से, और चाची जी कुछ फरमा रही हैं और मैं चाह रहा हूँ जरा उनकी आवाज में, क्योंकि ऑडियो जरा पहुंची तो मैं चाह रहा हूँ उनकी आवाज भी जरा ऑन एयर चल जाए।
1: कोलंबस कभी भी अमेरिका दरियाफ्त नहीं कर सकता था, लेकिन उसने अमेरिका दरियाफ्त किया, इसलिए उसे कोलंबस को किसी ने ये नहीं कहा कि कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, कितने बजे आओगे, किसका गए थे, क्यों गए थे, मैं भी साथ चली चलती, नहीं जाते तो क्या हुआ।
0: सही बात है,
1: क्या जाना जरूरी था, इस तरह के बातें। अच्छा ठीक है, वापसी में एक पाव दही लेते हैं ना, है? जैसे हमारी खवातीन करती, अमेरिका दरियाफ्त कर लिया।
0: बिल्कुल ऐसे ही है चाची, बिल्कुल सही बात आपने की है चाची, मेरी क्यूट सी प्यारी सी। और चाची जब भी इस तरह की बातें करती हैं बहुत अच्छी लग रही होती है, और इनकी बातें मुझे याद भी आती है अपने शो में। बस इंशाल्लाह ये फोन वाला सिलसिला कुछ सही हो तो जरा गपशप रहेगी आप लोगों से। अच्छा जी अब जरा टाइम हो गया है ब्रेक की तरफ जाने का, एक मिनट की ब्रेक नजर आ रही है। सुनते रहे एफएम 100 अयाज अहमद के साथ, मिसेस फारूक बहुत शुक्रिया आपका। तानिया जी क्या कहने आप, तानिया जी हमारे साथ हैं आज, और चाची थैंक्स कहने की कोई जरूरत ही नहीं, स्वीट सी आवाज, चार चांद हमारे शो में लग गए हैं आपकी आवाज के साथ। वह जनाब मिलते हैं ब्रेक के बाद।

0: आराम, AGS ट्यूबलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: Full volume with Ayaz Ahmed, 9 to 11, Sunday to Friday. It's a party that won't end.
2: Oh, so loud.
3: राइट जनाब, बहुत ही खूबसूरत ये ट्रैक भी मुझे जो है वो याद आ गया है, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी सी देर में, क्योंकि काफी मैंने स्लो ट्रैक्स प्ले कर दिए, तो अब जरा थोड़ा सा जरा फास्ट ट्रैक भी प्ले करते हैं। और ये मुझे एक वक्त था कैचअप सॉन्ग, ये बहुत हिट था, तो आज ये जरा नए स्टाइल में ये थोड़ा सा सुनाता हूँ और उसके बाद वापस आते हैं। मैसेजेस आप लोग करें, KHR स्पेस टेक्स्ट करेंगे और सेंड कर देंगे 3636 पर।

जनाब क्या ट्रैक था और मुझे डांस याद आ गया यार। इस गाने में जिस तरीके से खवातीन ने डांस किया क्यूट सा, अगर मौका मिले यूट्यूब पे तो देख सकते हैं आप। अच्छा जी, नादिया मलिक किस बात पे हंस रही हो, थोड़ा सुनना पड़ेगा। और इसके अलावा तानिया जी हैं, वो कह रही है नहीं जी खवातीन का होना भी बहुत जरूरी है, डॉक्टर अब्दुल कदीर की मिसाल दे दी। हाँ नहीं, बहुत चाची मजाक से कहते हैं। तानिया जी सीरियस नहीं लेना आपने। अच्छा जनाब, और संजीदा क्या कह रही है, आपका बेसाख्ता अंदाज रोज शो का इंतजार कराता है, आप में बनावट नहीं। मैं, मेरी बनावट ही कुछ ऐसी हुई है कि बनावट है ही नहीं। और आगे माशाल्लाह भी लिख दिया, सो स्वीट ऑफ यू, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके अलावा मिस्टर फारूक बहुत शुक्रिया सॉन्ग्स को पसंद करने का, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बिलावल कह रही नादिया जी आप अपना नाम क्यों चेंज करते हैं, इतना प्यारा नाम है आपका। भाई बहुत सारे लोग कह रहे हैं, इसके अलावा संजू भी कह रही है नादिया बहुत प्यारा नाम है। वो कह रहे नहीं, घर वालों को भी जरा टो में लगे रहते हैं ना कि पता नहीं नादिया मलिक सुन रही है कि नहीं सुन रही, इसलिए वो कह रही जरा चेंज कर लेती हूँ। लेकिन नादिया जी आपका जो ये नाम है नादिया वो पसंद कर रहे हैं लोग, तो ना करें तो ज्यादा अच्छा है, बाकी आपकी मर्जी है। इसके अलावा नादिया जी कह रही है कि आजकल वैसे भी लोग ये पूछ रहे होते हैं कि एक्सरसाइज करते हुए इस तरह के आप कपड़े पहनते हैं तो क्या। अच्छा वैसे उन्होंने सवाल किया था लेकिन इसका लोगों ने मजाक उड़ा लिया काफी सारे लोगों कि भाई वो कंबल पहन के एक्सरसाइज करें। अब ये भी नहीं, तमीज के भी पहन सकते हैं, अब ये तो नहीं। एक तवील बहस है जो की जा सकती है लेकिन लोग नाराज है इस बात में कि क्यों पूछ लिया भाई। क्या कहते हैं, मेजबान है, होस्ट है, पूछ लिया तो क्या हो गया। लेकिन नहीं भाई, फड़ लिया उन्होंने, कहा नहीं पूछा क्यों। अच्छा जनाब, और इसके अलावा गाने यार इतने सारे, मैं क्या करूं यार, ये वाला ट्रैक भी जरा शामिल करते हैं क्योंकि सिक्वेंसर मेरे बड़े फेवरेट हैं और इनका एक ट्रैक मैं जरूर अपनी क्यूशीट में शामिल करता हूं।

जनाब इतने मैसेज पढ़ पढ़ के गाने और क्यू शीट वैसी रह जाती है। कोशिश कर रहा हूँ मैं कि जल्दी जल्दी जरा सॉन्ग्स भी आपको थोड़ा पूरे पूरे ना सुनाओ, थोड़े थोड़े सुनाओ, ज्यादा से ज्यादा ट्रैक शामिल करें। और एंजेलिना कह रही है मजेदार सॉन्ग्स प्ले हो रहे हैं। एंजेलिना, सो नाइस ऑफ यू, आपको पसंद आ रहे हैं गाने, प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा संजू जी बहुत शुक्रिया, क्यू शीट की तारीफ कर रही है फुल टाइम। और नादिया जी क्या कह रहे हैं, नादिया जी आज फुल जो है ना दिलचस्पी के साथ सुन रही है। और उन्होंने मशवरा दिया है रमजान को, उन्होंने कहा रमजान चेंज करके सफर रख लो, वो भी अंग्रेजी वाला। क्या बात है नादिया जी, मैं कुर्बान जाऊं आपकी कॉमेडी के, नीचे गिर जाऊंगा मैं इतना हंस के। वैसे इनके लिहाज से अच्छी वैसे रमजान देख लो तुम, जो हरकत की है ना तुमने आज। आई एम अलाइव।

0: Turn it up. It's time to go with Ayaz Ahmed.
1: पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कोर्ट इसका नौजवान तबका है। पाकिस्तान की 61% आबादी 18 से 35 साल की उम्र के अफराद पर मुश्तमिल है, जो एक मुनफरद आबादियाती सरमाया है। नौजवान हमारी मईशत की धड़कन और हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं। अहम उनके खिलाफ एक खामोश जंग जारी है और वो है मुनशियात का बेहरेज। मुनशियात फरोश माफिया अच्छी तरह से जानती है कि कहां वार है। हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां उनका हदफ हैं, जहां वो नौजवान जहनों को खतरनाक नशा आवर अशिया से गुमराह कर रहे हैं। यही वो मकाम है जहां इंसदाद मुनशियात फोर्स के एन एल वाजे मकसद और मजबूत

0: स्टेशन पर मुनशियात को न कहीं जिंदगी को हाथ है। आइए इस खतरे के खिलाफ मुतहद। नशे से पाक नौजवान एक मजबूत मालियाती पाकिस्तान। AMF का साथ दें, मुस्तकबिल बचाएं, कौम को मजबूत करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: FM 24/7 365
3: प्यास तो सुनो यार।

Right, जनाब बिलावल भाई कहने जबरदस्त शो. गुड नाइट जनाब, गुड नाइट. वैसे सच बताऊं दिल नहीं चाहता कभी कभी, दिल करता है कि बंदा शो करता ही रहे, लेकिन टाइम कह रहा है ना भाई हम जरा निकलने की करो. अच्छा जनाब एक गाना और था यार, ये भी आज प्ले होने से रह गया. थोड़ा सा मैं आपको सुनाता हूँ, उसके बाद फिर टाटा बाय बाय करते हैं.

0: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारे गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: facebook.com/fm247365

0: é Aram. FM 100. Like us on
1: facebook.com/FM247365. FM 247365.

is facebook.com/FM247365. FM 247365.

मोहब्बत का दायरा बहुत वसी है। अल्लाह ताला ने इंसान में मोहब्बत कूट कूट के भरी। बस इजहार जो है वो हर एक से नहीं किया जा सकता। आप लोगों को थोड़ा वार्म अप करेंगे, शो का आगाज करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत सी गजल से। समाअत फरमाइए।

वेलकम बैक कहेंगे अगर ये कह दो। ब्यूटीफुल गजल और मुझे यकीन है कि आपको पसंद आई होगी। मैसेजेस कर सकते हैं आप, किए जाए स्पेस आपका नाम आपका मैसेज और उसको सेंड करेंगे 3636 पर। क्या मोहब्बत सिर्फ किसी को हासिल करने का नाम है? नहीं, मोहब्बत तो शायद उस वक्त भी होती है जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं। दुआ के लिए दिल ऐसे ही थोड़ी कहता है, ये भी एक मोहब्बत है। और आप दुआ करते हैं मगर उससे खबर तक नहीं होती कि आप उसके लिए दुआ कर रहे हैं। मोहब्बत तब भी होती है जब आप किसी की खुशी के लिए अपनी ख्वाहिशात पीछे रख देते हैं। और मोहब्बत शायद तब सबसे ज्यादा खूबसूरत होती है जब आप किसी को ये कहे बगैर कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, अपने अमल से उसे ये एहसास दिलाते रहते हैं कि तुम मेरे लिए बहुत अहम हो। चले आज एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे, आपके लिए मोहब्बत क्या है? क्या मोहब्बत किसी का साथ है? क्या किसी का इंतजार है, किसी की फिक्र है, या फिर किसी की याद? क्या है मोहब्बत आपके लिए जरूर बताइएगा 3636 पर। दिल जो चाह रहा है कुछ और सुनाए आपको। चलें इसी बात पर सुनिए।

वेलकम बैक कहेंगे कि हम बने हैं सिर्फ एक दूजे के लिए। चलें इस लैंग में कुछ आपके मैसेजेस शामिल करते हैं। मेहर आ गई हैं और कह रही हैं, सलाम नदीम भाई, होप यू विल बी फाइन। मेरा सवाल है आज आपसे कि एक अच्छे लाइफ पार्टनर में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। क्या खूब पूछा है आपने, और आज का शो भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन आपको बताने से पहले एक मैसेज और पढ़ लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम नदीम भाई, यूसुफ भाई पापोच से हैं। तमाम सुनने वालों को सलाम कहा है और एफएम 100 की तमाम फैमिली को भी, खुसूसी तौर पर हमारी आंटी चाची और रूसा को। नौरीन बहना आ गई हैं, कह रही हैं, अस्सलामुअलैकुम नदीम भाई, आज आपने शो में मेरी रूह जहां को एक बहुत ही प्यारी सी उन्होंने फरमाइश की है, वो जरूर डेडिकेट करनी है। बिल्कुल करेंगे जनाब। अच्छा, कुछ इंतखाब भी हैं, इंतखाब हम कुछ ही देर में शामिल करेंगे। अयूब लाला भी आ गए हैं, कह रहे जिगर या हबीबी बखैर रागले, जिगर आप को, एस गुल को, मुश्क एच गुल को और तमाम प्यारे प्यारे सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। और एस गुल, एच गुल, मुश्क और के नाम एक प्यारी सी गजल प्ले कर दीजिएगा। शेख साहब फरमाते हैं कि प्यार करने वालों सुनो, तुमने जो छोड़ा था वो मलाल लिखता हूं, तुमने जो छोड़ा था वो मलाल लिखता हूं। देखो ना, लोग कहते हैं कि मैं कमाल लिखता हूं। क्या बात है शेख साहब की। और फहद अहमद साहब आए हैं और कह रहे हैं, नहीं भाई, मैं आपको, आपका शो एक साल से सुन रहा हूं, मजा आता है, एक ट्रैक सुना दें। चिट्ठी ना कोई संदेश, तुम कहां चले गए। फहद भाई, आप एक साल से सुन रहे हैं, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहेंगे, आपने फर्स्ट टाइम मैसेज किया है और आप मुझे याद रहेंगे। और एक साल से सुन रहे हैं, एक साल से सुनते हुए आपको ये नहीं पता चला कि हमारे शो में इंडियन कंटेंट नहीं चलते, ये इंडियन कंटेंट है। तो पाकिस्तानी कोई गजल या कोई गीत, ऐसा गजल नुमा गीत, उसकी अगर आप फरमाइश करते तो हम जरूर शामिल शो करते। यानी कि समझ रहे हैं ना आप। आगे बढ़ते हैं जनाब। और फरहीन शहजादी हमारी बहन आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके। तमाम सुनने वालों को और खूबसूरत समातों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इंतखाब इन्होंने भी भेजे, वो कुछ देर में शामिल करेंगे। और हमारे प्यारे से अलीमुद्दीन यूसुफजई साहब भी आए हैं और उन्होंने भी कुछ इंतखाब भेजे हैं, लेकिन उनका सलाम दुआ जरूर पढ़ेंगे हम। तमाम सुनने वालों को उन्होंने सलाम कहा है और उसके साथ साथ मेरे वालिद मोहतरम को भी। आशार कुछ देर में शामिल होंगे जनाब सबके। ताहिरा मसूद और हमारे गुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे शहजादे अब्बास भाई तारिक रोड वाले, तमाम सुनने वालों को उन्होंने सलाम कहा है। दिल की गहराइयों से लव यू जनाब, लव यू। हमारी प्यारी सी शहजादी बहना जरीन नूर भी आ गई हैं, कह रही हैं, सलाम, कैसे हैं वाले साहब, कैसे हैं। संजू के लिए दुआएं और सबके लिए ढेरों सलाम। तो जनाब बढ़ते हैं एक बहुत ही प्यारी सी बात पर जो मेहर ने की। सवाल उन्होंने किया कि लाइफ पार्टनर में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। लेकिन खूबियों के हवाले से अगर आ जाए ना मेहर, तो इंसान हमेशा यही चाहता है कि तमाम खूबियों वाला इंसान मुझे मिले, मुझे हम सफर मिले। अभी मोहब्बत की जो बातें कर रहा हूं, ऐसे थोड़ी कर रहा हूं। जैसे मैंने उस बात पर जहां इख्तिताम किया था कि मोहब्बत
आपके लिए क्या है? क्या मोहब्बत किसी का साथ है, किसी का इंतजार है, किसी की फिक्र है या फिर किसी की याद? शायद हर शख्स के लिए मोहब्बत का मतलब जो है वो अलग होता है। किसी के लिए मोहब्बत सुबह का पैगाम है, तो किसी के लिए रात को सोने से पहले की आखिरी गुफ्तगू है। किसी के लिए वो शख्स है जिसके सामने दिल की हर बात कही जा सके, और किसी के लिए मोहब्बत सिर्फ एक नाम है जो आज भी दिल में पहले दिन की तरह जिंदा है। ये तमाम बातें मोहब्बत के हवाले से ही हैं, लेकिन आपने हमसफर के हवाले से बात की है कि उसमें क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। तो ये तो इंसान जो है वो ख्वाहिशात का पुतला है, वो चाहता है कि मेरा हमसफर जो है वो मुझे बहुत चाहे, मेरा हमसफर जो है खूबसूरत, जवान, हैंडसम हो, पैसा हो उसके पास, मोहब्बत बेतहाशा मुझसे करता हो। ये तमाम चीजें जो है वो हर इंसान की ख्वाहिश होती है, फितरत है, हमारी भी फितरत है। जो मर्द हजरात हैं उनकी ख्वाहिश ये होती है कि उनका हमसफर, होने वाला हमसफर जो है बहुत खूबसूरत हो, गोरा रंग हो, बड़ी बड़ी आंखें हों, लंबे लंबे बाल हों, दराज कद हो, दुबली पतली सी हो, मुस्कुराए तो ऐसे लगे कि दुनिया जो है वो मुस्कुरा रही है। तो ये उस वक्त होता है जब इंसान को मोहब्बत होती है, कोई दिल को फौरन छू जाता है, किसी की बात दिल में उतर जाती है। हम सफर अगर आप मुझसे पूछें महर, तो मेरी नजर में हम सफर ऐसा हो जो दिल से आपको मोहब्बत भी करे और आपकी इज्जत भी करे। ये बहुत जरूरी है, और जब ये दोनों चीजें एक साथ हो ना किसी के दिल में आपके लिए, तो आप यकीन माने कि मैं ये समझता हूं कि हम सफर को सूखी रोटी भी खिलाओगे ना वो खा लेगी खुशी से। महल हो, आसाइशें हो, गाड़ी हो, पैसा हो, बंगला हो, मगर हम सफर के दिल में आपके लिए प्यार ही ना हो, इज्जत ही ना हो, तो वो सब चीजें जो है ना बेकार लगती हैं। मेरा फलसफा थोड़ा सा मुख्तलिफ है इस हवाले से। मैं अपना फलसफा बयान कर रहा हूं, और माजरत के साथ अगर किसी की इस हवाले से दिल आजारी हो रही हो या मेरी बात बुरी लग रही हो, तो आगाज में ही माजरत चाह रहा हूं। फलसफा बहुत ही अजीब सा है, सोच बड़ी अजीब सी है। मैं ये समझता हूं कि वालिदैन जो है ना, जो सोचते हैं अपनी औलाद के लिए, कभी भी बुरा नहीं सोचते। हम ये लड़कपन का जो प्यार होता है, सोच होती है, मोहब्बत होती है, यकीन मानिए ये हर इंसान को, लड़की हो लड़का हो, लड़कपन में ऐसा होता है, ख्वाब सजाता है, सजाती है, और ऐसा लगता है कि इनको चकनाचूर करने वाले हमारे वालिदैन हैं, मगर हकीकत ऐसी नहीं है। दिल से इंसान ये सोच लेना कि जो फैसला इनका है, खुसूसी तौर पर लड़कियों के लिए कह रहा हूं, और ये खुसूसी तौर पर कह रहा हूं, लेकिन ये बात मर्द हजरात के लिए यानी कि लड़कों के लिए भी है ये बात, कि उनकी बात अगर मान लेना हम, उसमें कोई बुराई नहीं है, जिंदगी बड़ी हसीन गुजरती है फिर। और जो आप हम सफर में खूबियां देखना चाहती हैं बस, और ये जो मोहब्बत भी होती है ये खुद ब खुद हो जाती है। आप यकीन मानिए, हम सफर जब मिल जाता है बगैर मोहब्बत किए, आप नहीं सोचता इंसान है अरे मुझे किसी से मोहब्बत ही नहीं, ऐसा नहीं है, शादी हो रही है, तो जिससे शादी होती है ना तो चार कलमों में बहुत दम है, मोहब्बत हो जाती है। बात कहां से कहां ले गए हम भाई, बात हो रही है दिल की, बात हो रही है मोहब्बत की।
خیر جی آپ کے انتخاب شامل تو ہم کریں گے اگلے لنک میں, جس میں ہماری پیاری جی بہنہ نورین نے بھی انتخاب بھیجے ہیں, ہمارے فرحین شہزادی بہن نے بھی کچھ انتخاب جو ہے وہ بھیجے ہیں, کچھ میسیجز بھی ہیں آپ کے, تمام چیزیں ہم شامل کریں گے. ابھی ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک اور غزل کی جانب.

वेलकम बैक कहेंगे आप सबको। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, ब्यूटीफुल गजल। और उम्मीद करता हूं कि आप सबको बहुत पसंद आई होगी। और हमारे प्यारे से साहिबजादा साहब ने मुनीर नियाजी साहब के एक रुबाई में से दो शेर सुनाए थे। कुछ उंजवी रामा औखियां सन, कुछ गल विच गमाद दे तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू भी मरंदा शौक भी सी। इसका कुछ उर्दू में तर्जुमा इस तरह है, जिनको पंजाबी बिल्कुल समझ में नहीं आती, कि कुछ यूं भी राहें मुश्किल थी, कुछ गम का गले में टोक भी था, कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, कुछ मरने का हमें शौक भी था। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। उसके पुराने घर की तरफ जाना अच्छा लगता है, खिड़की को देखना जहां वो खड़ी होती थी। अमेरिका का वीजा तो है मेरे पास, कुछ करके रवाना हो जाऊंगा। फिर ख्याल आता है कि ये सही नहीं है और प्याज मार्केट वापस आ जाता हूं। 100 का 2 किलो, 100 का 2 किलो, 100 का 2 किलो, 100 का 2 किलो, ये साहिबजादा साहब ने लिखा। अच्छा, इस पर मैंने एक दफा जो है ना, एक ये भी आपने ये बात लिखी ना कि उसके पुराने घर की तरफ जाना अच्छा लगता है, उसका खिड़की में आना अच्छा लगता है, तो बड़े खूबसूरत सा आपने लिखा। फिर बाद में 2 किलो 2 किलो हो गया। लेकिन इसी तरह एक शो में मैंने भी इस तरह का जायचा खींचा था, मगर बाद में पता चला कि मैं जायचा खींच रहा होता हूं, लोग समझते हैं कि अपनी रुदाद बयान कर रहा हूं। ऐ निकलते सूरज की पहली किरण, ऐ अक्टूबर की पहली ठरठराती शबे शब अलविदा। सलामत रहें, खुश रहें, आपका हर दिन अच्छा गुजरे। हेलो अक्टूबर, नया महीना, नई उम्मीदें, कुछ अधूरे ख्वाब, कुछ नई दुआएं। दुआ है कि ये अक्टूबर आपकी जिंदगी में सुकून, खुशियां और वो खूबसूरत लम्हे लेकर आए जिनका दिल को मुद्दत से इंतजार है। ये हमारी प्यारी सी बहन नौरीन के इंतखाब को शामिल कर रहा हूं। कहती हैं कि ये उसके हक में बेहतर था कि हमसे बदगुमान रहता, वगरना बदगुमानी को मिटाया जा भी सकता था। हमारे साथ चलने में खसारे ही खसारे थे, वगरना हम सफर उसको बनाया भी जा सकता था। हमें मालूम है रास्ते बहुत दुश्वार थे, लेकिन उसे आना अगर होता तो आया जा भी सकता था। तन्हाई में अक्सर मेरा रातों को उठ उठ कर रोना और दिल मिलाना आकर चुप कराया भी जा सकता था। हाय हाय, क्या बात है भाई, क्या बात है। कहती है मोहब्बत मेरे नजदीक किसी को हासिल करने की जिद नहीं, बल्कि किसी के एहसास में जीने का नाम है। ये वो खामोश दुआ है जिसमें ना कोई शर्त होती है ना कोई मुतालिबा, बस किसी की मुस्कुराहट से दिल का रोशन हो जाना ही मोहब्बत है। अब ये बात है तो फिर हम भी कुछ कह दें। और ये बात उन तमाम लोगों के लिए भी है जिनकी मोहब्बत अधूरी रह गई, जिन्होंने किसी को चाहा मगर अपना नहीं बना सके, जिन्होंने इंतजार किया मगर मुलाकात ना हुई, जिनके पास यादें तो रह गईं मगर वो शख्स
नहीं रहा। याद रखिए, हर मोहब्बत का अंजाम मिल जाना नहीं होता। कुछ मोहब्बतें हमें बदलने के लिए आती हैं। छोटा सा जुमला कहा है मैंने, ये अगर समझिएगा कि कुछ मोहब्बतें हमें बदलने के लिए आती हैं, कुछ हमें ये सिखाने आती हैं कि दिल कितना गहरा हो सकता है, और कुछ मोहब्बतें हमें ये सिखाकर चली जाती हैं कि किसी को खोने के बाद भी उसे इज्जत, दुआ और मोहब्बत से याद किया जा सकता है। आई लव यू अयूब लाला, आई लव यू नदीम भाई, एस गुल, जीती रहो मुस्कुराती रहो बहन। और शहजादी बहना जरीन नूर कहती हैं, आवाजों के खालीपन को खामोशी से भर जाते हैं, आधी बात छुपाने वाले आधी उम्र में ही मर जाते हैं। वाह वाह, बहुत खूब। अच्छा भाई, ये आईसी पैक शायद ये नाम है भाई, नाम सही बताइए। आदाब एने भाई, अम्मी के लिए दुआ करने किया शुक्रिया। मेरा नाम रिजवान है। रिजवान, ये जहां पर आप लिखते हैं ना आईसी पैक,

जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया है उनको बता दें जनाब, मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एन ए सोने। स्लीपलेस नाइट में मैं हूं आपके साथ, आपका और मेरा साथ है 3 बजे तक और 3 बजे तक ये महफिल सजी हुई है। दिल की बातें हो रही हैं, मोहब्बत की बातें हो रही हैं। मेहर कहां गायब हो गई 2 मैसेज करने के बाद? सवाल का जवाब चाहिए था सिर्फ। नौरीन भैना भी खामोश हो गई। आगे बढ़ते हैं, साहिबजादा साहब खामोश नहीं है, वो कह रहे हैं कुछ। उसे दिल तो दे चुके हैं, चाहे तू वो मेरी जान ले ले, वो जैसे मुझसे चाहे इम्तिहान ले ले। साहिबजादा साहब कितने इम्तिहान दे चुके हैं आप। एक समंदर है जो काबू में है मेरे, और एक खतरा है जो मुझसे संभाला नहीं जाता। हाय हाय, एक समंदर है जो काबू में है मेरे, और एक खतरा है जो मुझसे संभाला नहीं जाता। एक उम्र है जो बितानी है उसके बगैर, और एक लम्हा है जो मुझसे गुजारा नहीं जाता। क्या बात है जरीन नूर मेरी प्यारी सी बहन, बहुत खूब जबरदस्त। संजू की याद आ रही है आज के शो में, आ जाओ संजू। नौरीन महना भी याद कर रही है बहुत, और हम भी। खैर रूहे मन जब चाहेंगी आ जाएंगी। हमेशा अपने दिल के दरवाजे खुले रखा करो, हमेशा खुले रखा करो। पता क्यों? जिनकी मोहब्बत अधूरी रह गई है ना, जिन्होंने किसी को चाहा मगर अपना बना ना सके, जिन्होंने इंतजार किया मगर मुलाकात ना हुई, जिनके पास यादें तो रह गईं मगर वो शख्स नहीं रहा। यानी कि समझ रहे ना आप। अपने दिल से एक सवाल जरूर कीजिए, जिस शख्स की वजह से आपके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट आई थी, या आपने कभी उसका शुक्रिया अदा किया था। अच्छा, ये बात जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट कर रहा हूं आप लोगों से। जरूरी नहीं है कि मोहब्बत की वही वाली शक्ल हो जो हम सफर बनने के लिए हो। मोहब्बत की तो बहुत सारी शक्लें होती हैं। शुरू के शो के आगाज में मैं जैसे मैंने बात की थी कि मोहब्बत अल्लाह ताला ने इंसान के दिल में बहुत वसी रखी है। अब देखें कि हम जिसको चाहते हैं, जिसको अपना हम सफर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए तो हम दिलो जान से उसको चाह रहे होते हैं, मोहब्बत कर रहे होते हैं। तो सारी मोहब्बत उधर ही थोड़ी चली गई। अम्मी से भी बहुत मोहब्बत है, वो भी तो मोहब्बत है ना, ये जो कि अल्लाह ने दिल में डाली हुई। भाई से भी है, बहन से भी है, अम्मी से भी है, अब्बू से भी है, हमारे दादा से भी बहुत मोहब्बत है मुझे। मेरा ये दोस्त इसके लिए जान देने को दे चाहता है, बहुत मोहब्बत। तो ये मोहब्बत ही है जो कि अल्लाह ताला ने हमारे दिल में जो है वो डाली हुई है। वसी होती है मोहब्बत, बहुत वसी होती है, इसकी कोई हद नहीं मुकर्रर होती। हां, बस जहां पर शिद्दत बढ़ जाती है वहां पर ऐसा लगता है बस ये इसी को ही चाहता है या चाहती है, इसी से मोहब्बत करता है या करती है। तो जिस शख्स की वजह से आपके चेहरे पर कभी भी मुस्कुराहट आई हो ना, जिसने आपसे ये नहीं कहा हो कि आपसे उसको मोहब्बत है, तो आपने कभी उसका शुक्रिया अदा किया है? अगर नहीं किया तो देर मत कीजिएगा, क्योंकि जिंदगी में कुछ लोग दोबारा नहीं मिलते, ये भी जहन में रखिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दोबारा कहने का मौका नहीं देती, और कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो वापस नहीं आते, यकीन मानिए। ये इजहार के हवाले से जो मैं बात कर रहा हूं, मुस्कुराहट के हवाले से बात कर रहा हूं, और जो दिल की बात करने के हवाले से कर रहा हूं, ये सिर्फ उस मोहब्बत के लिए नहीं कर रहा, हर मोहब्बत के लिए कर रहा हूं।

वेलकम बैक कहेंगे सुने आप सबको. और लाला कैसा लगा आपको गाना यानी कि ये गजल बताइएगा जरूर. भाई वो बड़ा अच्छा भेजा था जरीन नूर मेरी बहन ने. इश्क जब हाथ छुड़ाए वाह वाह वाह वाह वाह क्या बात. अच्छा आगे बढ़ते हैं जनाब आपके मैसेजेस की जाने. और इनका एक और बड़ा अच्छा शेर आया था वो कौन सा था. एक समंदर है जो काबू में है मेरे और एक कतरा है जो मुझसे संभाला नहीं जाता. वाह वाह वाह ये अच्छा था. अख्तर अली सोमरो साहब ने मैसेज किया है बहुत बहुत शुक्रिया भैया आपका. और रिजवान कह रहे हैं रिजवान मैंने आपको कहा था कि ICPAC की जगह पर अपना नाम लिखा करें. आज तो मुझे याद है हो सकता है कल मैं आप मुझे मैसेज करें और मैं आपका नाम ही ना पढ़ सकूं. तो वो कह रहे हैं कि सलाम के बाद कह रहे हैं कि आपने मेरे मैसेज शामिल किए. आपने मेरा मैसेज शामिल नहीं किया. मैंने पहली बार मैसेज किया था और फरमाइश की थी. मेरा ख्याल है कि आपको सुनाई कम दे रहा भैया. आपके तमाम मैसेजेस शामिल हुए हैं. फरमाइश शामिल नहीं हुई मैसेजेस तमाम शामिल हुए हैं. अच्छा जी एने भाई जीबी यानी कि जीबी लिखा हुआ है गुलबानो भी तो गायब हैं शो में नहीं आती हैं अब. बात तो आपकी सही है. और जैसा कि मैंने रूहे मन यानी कि संजू के लिए जो बातें मैंने कही हैं आप यकीन माने यही बातें जो हैं वो गुलबानों के लिए भी हैं. गुलबानों आती थी इस शो में तो वो भी बहुत ही जबरदस्त इंतखाब लेकर आती थी बेहतरीन किस्म के हम पढ़ते थे और उनको भी भरपूर तरीके से हम यहाँ पर उनकी रिस्पेक्ट करते थे उनको इज्जत देते थे और उनके तमाम मैसेजेस पढ़ते थे. और लेकिन अचानक से वो गायब हो गई. अल्लाह ताला उनको खुश रखे. हमारी दुआएं हमेशा हैं हर एक के लिए यानी कि समझ रहे हैं ना आप. तो नवीद भाई भी आ गए हैं और कह रहे हैं कि भाई नदीम आपका छोटा भाई नवीद और मैं सुन रहा हूँ. जीते रहो मुस्कुराते रहो शाद रहो आबाद रहो. भाई बहुत बहुत शुक्रिया सुन रहे हो.

अच्छा जी, एस गुल कह रही हैं, वैसे ठीक कहा है एच गुल ने कि जी बी गुलबानो ने, गुलबानो पुप्पो ने शो में आना छोड़ दिया है, ये एस गुल कह रही हैं। मैंने फिर आपसे आज क्योंकि संजू का भी इसी हवाले से ज्यादा जिक्र हो रहा है, क्योंकि आज का शो जो है वो उनका बड़ा पसंदीदा शो है और हमेशा उनके इंतखाब आते थे और एक नहीं होते थे, बहुत सारे इंतखाब होते थे और एक से बढ़कर एक होता था, उसका एक अपना एक मजा होता था। और आप यकीन मानिए कि आप लोगों के भेजे हुए जो अशार होते हैं, इंतखाब होते हैं, जो मैसेजेस होते हैं ना, ये 100% एक आरजे के मूड पर असरअंदाज जरूर होते हैं। अगर आप ये कहें कि कोई अजीब सा मैसेज आ रहा है और वो आरजे ऐसे ही पड़ होते हैं असरअंदाज, तो जो अच्छे मैसेजेस होते हैं, जैसे कि मैंने संजू के मैसेजेस के हवाले से कहा, तो वो हमारे मूड पर जरूर असरअंदाज होते थे। और उससे फिर एक से बढ़कर एक चीजें मुझे जहन में आती थी उनकी बातों से, जहन में आती थी और वो फिर आप तक पहुंचाता था, तो आपको अच्छा लगता था, तो उनकी कमी तो है। अब्बास भाई ने एक मैसेज भेजा है। अब्बास भाई, एक हार्ड बनाकर जरूर भेज दीजिएगा अगर मैं दुरुस्त समझाऊं। उनके मैसेज से जो मैं अंदाजा लगा सका हूं वो ये कि ये अक्टूबर का जो महीना है वो इनके लिए बहुत अहमियत का हामिल है। उनकी जिंदगी में वो एक से दो हो गए थे तकरीबन 10 साल पहले, एक ऐसे रिश्ते में बन गए थे कि उस रिश्ते से उनको मोहब्बतें चाहते ही मिली, हम सफर मिला, और इसी अक्टूबर यानी कि 2026 में ये सफर जो है वो आगे बढ़ने के लिए गामजन है। तो सालगिरह आ रही है, एनिवर्सरी इनकी आ रही है जनाब 9 तारीख को, तो बस आप मुझे गाहे बगाहे याद दिलाते रहिएगा, अभी 9 तारीख में कुछ दिन बाकी हैं, तो हम जरूर विश करेंगे आपको और आपको डेडिकेट भी करेंगे ट्रैक दोनों को, अब्बास भाई को भी, मिसेस अब्बास को भी। ये अच्छा किया आपने, ये दुरुस्त मैंने बिल्कुल समझा है। देख लें अब्बास भाई, मोहब्बत हमारी किस तरह समझते हैं हम बातों को। अच्छा जनाब, अब इंतखाब की जानिब चलते हैं और नौरीन भैना के एक फरमाइश है, वो फरमाइश अभी हम अब शामिल करेंगे। अच्छा जनाब, हमारे अय्यूब आफरीदी भाई को बहुत अच्छा लगा, आज इनके दिल के तार छिड़े हुए हैं बहुत। और जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं ना, तो आप यकीन माने इल्हाम भी होते हैं। इल्हाम से मुराद ये कि जब उसका दिल जो है इधर से उधर हो रहा होता है ना, तो आपको ऐसा एहसास होने लगता है कि कोई बात है यार, बस इसके लिए जरूरी है कि दिल जुड़ा होना चाहिए। तो लाला, हमें भी आपसे मोहब्बत है लग रहा है। ना दिल होता ना दिल रोता, ना दिल दिल से जुदा होता, ना तुम इतने हसी होते, ना दिल तुम पे फिदा होता। हाय हाय, एज़ वेल मौके पर शेर मारा है आपने, जबरदस्त।

वेलकम बैक कहेंगे जनाब, थोड़ी सी माजरत चाहेंगे आपसे कि आपको कुछ देर के लिए हम म्यूजिक सुनाते रहे, लेकिन इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो अभी हमने आपको लेकर जाना है जनाब एक बहुत ही प्यारे से ट्रैक की जानिब, और ये ट्रैक जो है हमारी प्यारी सी बहना नौरीन तौसीफ की जानिब से हम डेडिकेट कर रहे हैं उनकी रूह जान को, हमारे शो की प्यारी सी रूह मन को। हेलो पढ़ो

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको, इश्क हो गया। ब्यूटीफुल अनवर मियादाद, बदर मियादाद। और जनाब मैसेजेस आपके आ रहे हैं, हमारे अयूब लाला का मैसेज पढ़ लें। जिगर आज का शो बहुत जबरदस्त है, लेकिन वक्त का पता नहीं चल रहा, पूरा का पूरा उड़ गया। अरे आप यकीन मानिए, वाकई में नहीं पता चला। और सॉन्ग भी उनको पसंद आया है, शुक्रिया। अख्तर अली सोमरो साहब नवाब शाह से हैं जनाब, और कायदे अवान यूनिवर्सिटी कालूनी से। और अख्तर अली सोमरो साहब बहुत बहुत शुक्रिया, पहले आपका सिर्फ नाम आया था वो हमने पढ़ दिया था। अच्छा जी, एजगुल कह रही हैं जी अने भाई पठान भी पंजाबी समझ लेते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये निगहत दोबारा आ गई हैं और शुक्रिया भी अदा किया उन्होंने एडवांस में। निगहत वक्त का पता नहीं चला, आपकी गजल हम जरूर चलाएंगे। अगर वक्त ने साथ नहीं दिया तो जैसे ही हम टाटा बाय बाय करेंगे तो उसके बाद भी गजल चलेगी आपकी, जरूर चलेगी। लेकिन आपने जो गजल के बोल लिखे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये मुन्नी बेगम की आवाज नहीं है। ऐ जज्बा दिल गर मैं चाहूं हर चीज, ऐ जज्बा दिल गर मैं, ये नैयरा नूर की शायद आवाज है, ये मेरा ख्याल है, लेकिन मेरा ख्याल है नैयरा नूर की ही, बिल्कुल नैयरा नूर की ही आवाज है, ये मुन्नी बेगम की आवाज नहीं है। और आपकी ये वाली गजल हम जरूर चलाएंगे, डोंट वरी। नौरीन बहना कहती हैं, नदीम भाई शोभी भाई की तबीयत अब कैसी है, मेरी तरफ से सलाम और ढेरों दुआएं। जीती रहो मेरी प्यारी सी बहना, ये बहुत अच्छा किया आपने, याद दिला दिया मुझे, पहले से थोड़ी बेहतर है। लेकिन शोभी भाई के लिए आप लोगों ने ढेरों दुआएं करनी है कि अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। कीमती चीज मोहब्बत थी सो बर्बाद हुई, पास अब कुछ भी नहीं यार बचाने के लिए, इस कदर घेर के रखा है उदासी ने मुझे, सिर्फ हंसती हूं मैं तस्वीर खिंचाने के लिए। हमारे अब्बास भाई कह रहे हैं, नदीम भाई आ जाए चाय पी लीजिए हमारे साथ, और ढेरों दुआएं दी उन्होंने, बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास भाई, थैंक यू आपने कहा और मुझे गुफरान महीने चाय पिला भी दी है। और हमारे अलीमुद्दीन यूसुफ़ज़ई साहब ने शुक्रिया अदा किया है, सर शुक्रिया नहीं अदा किया करें, आई लव यू जनाब।

आपको एक इंतखाब सुना दें, आज फैस मुझे बहुत याद आ रहे हैं। कहते हैं कि याद का फिर कोई दरवाजा खुला आखिर शब, दिल में बिखरी कोई खुशबू ए कबा आखिर शब, सुबह फूटी तो वो पहलू से उठा आखिर शब, वो जो एक उम्र से आया ना गया आखिर शब, चांद से मान सितारों ने कहा आखिर शब, कौन करता है वफा अहद वफा आखिर शब, लम्से जाना लिए मस्तिये पैमाना लिए, हमदे बारी को उठे दस्ते दुआ आखिर शब, घर जो वीरा था सरे शाम वो कैसे कैसे, फरकते यार ने आबाद किया आखिर शब, जिस अदा से कोई आया था कभी अव्वल शब, उसी अंदाज से चले चले बादे सबा आखिर शब। ये फैज साहब की नज्म थी और ये नज्म आपके गोश गुजार की। अब कुछ आखिर में चर्चा भी कर दें, मोहब्बत के हवाले से इतनी बातें की, क्या कहूं आखिर में मैं, बस इतना कहूंगा कि मोहब्बत को मुश्किल मत बनाया करें, मोहब्बत में इज्जत रखिए, एतमाद रखिए, एक दूसरे की कदर कीजिए। उसकी वजह यह है कि खूबसूरत चेहरे जो होते हैं ना, वो वक्त के साथ बदल जाते हैं, खूबसूरत आवाजें जो हैं वो वक्त के साथ खामोश हो जाती हैं, मगर किसी के साथ गुजारा हुआ अच्छा वक्त दिल में हमेशा जिंदा रहता है। तो लिहाजा अपने चाहने वालों की कदर कीजिए। को वक्त दीजिए, उनकी बात सुनिए, उनका ख्याल रखिए, और अगर दिल में मोहब्बत है तो इजहार भी कीजिए। असल में वजह यह है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर पता चल जाए ना ये मोहब्बत करता है या करती है, तो वो फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं उसकी मोहब्बत को। ये नहीं होना चाहिए, ये किसी के लिए नहीं कह रहा हूं, आपके लिए कह रहा हूं, क्योंकि आपको बेतहाशा लोग चाहते होंगे। चाहत की शक्लें अलग अलग हैं, मोहब्बत की शक्लें अलग अलग हैं। तो ये मैंने जितनी बातें की हैं सिर्फ एक मोहब्बत के लिए नहीं की, सब मोहब्बतों के लिए की है। उनकी कदर कीजिए। इसके साथ ही जनाब अब आपसे इजाजत भी चाहनी है, और मेरी प्यारी सी नौरीन बहना आखिर में बिल्कुल आखिरी लम्हात चल रहे हैं, वरना मैं आपका ये इंतखाब भी जरूर शामिल करता, इसके लिए मैं बहुत तहे दिल से माजर चाहूंगा। तो आखिर में एक और बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक जो है ये भी डेडिकेट करते हैं जनाब आप सबको, और इसके बाद जो है, बल्कि सबको नहीं डेडिकेट करेंगे जनाब, ये सिर्फ एक को ही डेडिकेट करूंगा मैं, आखिर वाला जो मैं चला रहा हूं ये मैं खुसूसी तौर पर हमारी प्यारी सी आंटी अगर सुन रही हैं तो आंटी की पसंदीदा गजल है वो मैं चला रहा हूं, तो ये हमारी आंटी के लिए होगी। और उसके बाद जो गजल चलेगी, ये आखिरी गजल चलने के बाद भी एक गजल चलेगी जो कि हमारी प्यारी सी लिसनर एक आई है निगहत, तो निगहत आपके लिए भी वो गजल चलेगी, ठीक है, आपने जो ए जज्बाए दिल कहा है तो वो जरूर चलेगी। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, राहिब या खान, मुल्तान, अबटाबाद, गुजरात, जेलम, अक्रॉस पाकिस्तान, दिस इज FM 100।
2: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।